सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम दे जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है. जबरदस्त

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jio
1: Bindas. Awesome. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the

0: 10 मिनट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग, इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस, सेव मोर ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:06 हो रहे हैं, यानी कि 4 घंटे बैठेंगे एक साथ, करेंगे दिल खोल के बात, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे और ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो भाई हमारा ये सिलसिला वक्त बिताने का मैं शुरू करने वाला हूँ, मगर उससे पहले आप अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर आइए, मुझे मैसेज कीजिए, बताएं क्या हाल है, कैसा चल रहा है। धीरे धीरे धीरे ये हफ्ता भी रफ्ता रफ्ता खत्म होने वाला है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। बताइए क्या क्या प्लान कर रखा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज के इरादे के बारे में बताइए, क्योंकि इंटेंशन इम्पोर्टेंट है बाबू। अब देखिए बातें तो हम करेंगे ही, किससे खबरें भी सुनाएंगे, मगर गाने भी आपके लिए बहुत बढ़िया वाले लाए हैं।

तो भाई तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो है सिर्फ लव का डोज नहीं है, एनर्जी का डोज है और गुड वाइब्स का डोज भी है। तो भाई कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम भरने वाले हैं उड़ान। और बाबूमोशाय मॉर्निंग सिर्फ गुड नाइट, बिंदास होनी चाहिए। और बिंदास मॉर्निंग को किक स्टार्ट करते हैं पति पत्नी और वो दो मूवी के एक गाने के साथ। स्टे ट्यून्ड, ये रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
2: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ बाय ए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
4: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
5: हाय, आई एम राजकुमार राव।
6: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
7: हाय, दिस इज दिशा पार्दी।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM।
8: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:18 हो रहे हैं और यहाँ पे अबरार भाई का मैसेज आया है। अबरार भाई ने एक फोटो भेजा है मुझे और लिखा है गुड मॉर्निंग करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अर्श भाई का मैसेज आया है और अर्श भाई ने भी मुझे एक बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा फोटो भेजा है और लिखा है गुड मॉर्निंग भाई। और अर्श भाई यार बता दो ये एरिया कहाँ का है, काफी मस्त लग रहा है यार, मतलब देख के मजा आ गया। एक फोटो भेजा उन्होंने, बहुत ही प्यारी जगह। उसके साथ साथ शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है लाइफ इज लाइक अ फेरिस व्हील, 1 मिनट यू आर ऑन टॉप, द नेक्स्ट यू आर एट द बॉटम, जस्ट स्टे इन योर सीट, एंजॉय द राइड एंड हैंग ऑन अंटिल यू रीच द टॉप अगेन। वाओ, गुड मॉर्निंग करके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ निशांत कुमार जी का भी मैसेज आया है। निशांत कुमार जी ने लिखा है कि गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। और अरहम भाई का भी मैसेज आया है, उन्होंने भी एक फोटो भेजा है मुझे, गुड मॉर्निंग लिखा है और उसके एक बहुत ही बढ़िया जगह यार, मतलब कहाँ है ये, आप कहाँ घूम रहे हैं आप लोग, मुझे बताइए सुबह सुबह कहाँ निकले हैं, जरा लोकेशन भी बताइए। बहुत अच्छा लगा ये फोटो देखकर, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। थोड़ी देर में गानों के उस पार हम आएंगे एक सवाल लेकर फुटबॉल से रिलेटेड, तैयार हो जाइए सवाल के लिए। यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: एटलीस्ट गाने के एंड में समझ में तो आ गया ना कि भाई क्या है उनका प्यार, वही सबसे इम्पोर्टेंट। क्लैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए भाई, बिना क्लैरिटी के कुछ नहीं हो सकता। स्टेशन क्लॉक में 6:34 हो रहे हैं और यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड स्टोरीज को।
1: रेडियो ऑल ऑफ प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: तो भाई ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में सवाल ये है कि कितने कंट्रीज ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, ध्यान से सवाल सुन लीजिए, कितने कंट्रीज ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है। तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी मैसेज कर दीजिए 3311063 पर। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑल 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर। कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि कितने कंट्रीज ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है, और मेरे पास यहाँ पे जवाब आए हैं। मुझे अर्ज भाई ने मैसेज किया है, उन्होंने बोला है कि टिल 2022 8 कंट्रीज हैव वन वर्ल्ड कप एंड ब्राजील वॉन 5 टाइम्स। बिल्कुल बढ़िया जी। अरहम भाई का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है ओनली 8, ब्राजील 5 टाइम्स, जर्मनी 4 टाइम्स, इटली 4 टाइम्स, अर्जेंटीना 3 टाइम्स, फ्रांस 2 टाइम्स, उरुग्वे 2 टाइम्स, स्पेन 1 टाइम एंड इंग्लैंड 1 टाइम। तो 8 कंट्रीज ने जो है जीता है। बिल्कुल सही जवाब भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी खुशी में एक साथ बैठकर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेश। स्टेशन क्लॉक में 7:07 हो रहे हैं और यहां पे चलिए भाई मौसम का हाल देख लेते हैं। क्या मौसम मौसमिंग कर रहा है? क्या मौसम मौसमिंग करेगा? मौसम मौसमिंग क्यों नहीं कर रहा है? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, मगर मौसम का हाल अभी देख लेते हैं। तो चलिए भाई, अभी 37 डिग्री सेल्सियस हो रहा है टेम्परेचर। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस और लोवेस्ट जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। और उसके साथ साथ हवाएं जो हैं 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही हैं और मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा मुझे पिघला तो नहीं देगी? ना मुनाना, बाहर नहीं निकलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर बाहर गर्मी है तो जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके साथ साथ काफी सनी डे दिखाया है और इसी खुशी में आप जरा मुझे यार बाहर की तस्वीरें जो हैं भेजिए, दिखाइए मुझे कैसा चल रहा है बाहर, क्या क्या नज़ारे हैं, कहाँ पे हैं आप, जरा फोटो क्लिक कीजिए और मुझे सेंड कीजिए 3311063 पर। फिलहाल यहाँ पे एक काम करते हैं, विशाल मिश्रा की आवाज में बंदर मूवी का गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Namaskar, main hu R Madhavan.
5: Namaskar, main hu R Madhavan.
4: Aap sun rahe hain Radio Olive 106.3 FM.
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम app and experience faster consultations. Download it today.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. और भाई स्टेशन क्लॉक में 7:18 हो रहे हैं और यहाँ पे मुझे अरहम भाई का मैसेज आया है. उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट फोटोज जो है मुझे भेजे हैं. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच. मुबीन अहमद भाई का भी मैसेज आया है. उन्होंने लिखा है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आई एम एट मतार कदीम स्ट्रीट हैविंग इंडियन मसालेदार टी. अरे अरे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. मौसम इज ऑसम है, स्प्रिंग सीजन, माइल्ड विंडी वेदर. वाह, इस मैसेज का सार्काज्म समझ में आ रहा है मुझे. वैसे बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच. और सामी जी का मैसेज आया है. सामी भाई ने मैसेज किया है, उन्होंने बोला है, अस्सलाम वालेकुम सदे भाई, क्या हाल है. वालेकुम अस्सलाम भाई, हाल ते वदिया, तुसी दसो की हाल है. और उन्होंने बोला कि आज क्या मस्त गाने बजा रहे हो. थैंक यू सो मच जी. ये सारा श्रेय जो है हमारे म्यूजिक मैनेजर को जाता है, तो जरूर मैं ये कन्वे कर दूंगा उनको. थैंक यू सो मच. और उसके साथ साथ इसी खुशी में काम करते हैं, जबरदस्त हिट प्ले करते हैं एक साथ बैठकर और कहते हैं जियो बिंदास.
1: अब सुनिए.

0: Manila's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Gio Bindas.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
3: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस Download it today.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई यहाँ पे चलिए बात करते हैं फिटनेस के बारे में। तो शुरू करते हैं, फिट है तो हिट है,
1: फिट है तो हिट है,
0: फिट है तो हिट है। मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे। देखिए, कभी कभी हमें लगता है कि यार स्ट्रेस फील नहीं कर रहे मेंटली, तो बॉडी में स्ट्रेस होगा नहीं। मगर क्या सही में ऐसा है या कुछ और है इसके पीछे? चलिए डिटेल में बात करते हैं। स्ट्रेस जो है सिर्फ एक इमोशनल या मेंटल वो नहीं होता। रिसर्च दिखाती है कि बॉडी फिजिकल स्ट्रेस भी एक्सपीरियंस कर सकती है, चाहे आप मेंटली बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हो। कई चीजें बॉडी पर फिजिकल स्ट्रेस डाल सकती हैं, जैसे पुअर स्लीपिंग, ओवर ट्रेनिंग, डिहाइड्रेशन, इलनेस या कोई इन्फेक्शन, या फिर एक्सट्रीम हीट या कोल्ड। इन सिचुएशंस में बॉडी कॉर्टिसोल और दूसरे स्ट्रेस हॉर्मोन्स जो है उसे रिलीज करता है, ताकि वो चैलेंज को हैंडल कर सके। अगर ये फिजिकल स्ट्रेस बार बार या लॉन्ग टर्म रहे तो रिकवरी स्लो हो सकती है, फटीग बढ़ सकता है और परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एथलीट मेंटली रिलैक्स्ड हो सकता है, लेकिन अगर वो बिना रिकवरी के रोज इंटेंस वर्कआउट कर रहा है तो उसकी बॉडी फिर भी स्ट्रेस में हो सकती है। इसी तरह कम नींद लेने के बाद भी आपको मेंटली ठीक लग सकता है, लेकिन बॉडी के रिपेयर और हॉर्मोन्स जो हैं उनके बैलेंस पर असर पड़ सकता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि स्ट्रेस का मतलब सिर्फ टेंशन या एंग्जाइटी नहीं होता। बॉडी में स्लीप की कमी, डिहाइड्रेशन, इलनेस और एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से स्ट्रेस एक्सपीरियंस हो सकता है। इसलिए रिकवरी और सेल्फ केयर के लिए ये चीजें भी बहुत जरूरी है कि आप इन पे भी ध्यान दें। और यही बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: 26 million riyals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million riyals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 riyals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000+ है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on

0: Enjoy our Lucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Lucas, world's favorite jeweler.
1: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
2: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
1: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
1: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस Download it today.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे एक बहुत ही बिंदास खबर आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। रोबो टैक्सी का ट्रायल जो है सक्सेसफुल हो चुका है। कतर के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और मोसलात ने इलेक्ट्रिक ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी का सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट किया। टैक्सी ने मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर से ओल्ड दोहा पोर्ट तक का सफर जो है सक्सेसफुली कंप्लीट किया। ट्रायल की सक्सेस के बाद प्रोजेक्ट अब नेक्स्ट फेज में एंटर करेगा, जहां रोबो टैक्सीज बिना ड्राइवर के ऑपरेट होंगी और उन्हें रिमोटली मॉनिटर किया जाएगा। अगस्त 2025 से शुरू हुआ था ये पायलट और इसमें 2500 ऑटोनोमस ट्रिप्स कंप्लीट हुए हैं, जिसमें 94% राइड्स बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के सेफली कंप्लीट हुई। अगले फेज में ड्राइवरलेस रोबो टैक्सीज ओल्ड दोहा पोर्ट से द गेट मॉल, सुक वाकिफ से शेरेटन और मियां से वेस्ट पे, यहाँ जो रूट्स हैं इनको फॉलो की जाएंगी। इन पर ग्रेजुअली जो है हम देख सकते हैं ड्राइवरलेस रोबोट टैक्सीज। और ये इनिशिएटिव जो है ये एक स्मार्ट, इको फ्रेंडली और सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने का है, जो नेशनल विजन 2030 और ऑटोनोमस मोबिलिटी स्ट्रेटेजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रिंग फॉर द न्यूली मैरिड क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
2: अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम इट्स एन इमोशन।

0: FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स
2: आल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग, इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million rials विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: एप्लीकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: हाय, मैं हूं सोहाली खान एंड यू आर लिस्टनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
2: Olive Sano Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई स्टेशन क्लॉक में 8:16 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है मैं जरा बात करना चाहूंगा उस खेल के बारे में जो है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with
3: download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
0: और भाई कल का मैच अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट सही में ब्लॉकबस्टर था। बहुत ही बढ़िया मैच। और मैच से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी बातें जो हैं हो रही हैं, मगर यहाँ पे मैं फोकस करना चाहूंगा थोड़ा कि किस तरीके से कमबैक करने का जो वो होता है ना, एक प्रेशर डील करना, गेम की मैच्योरिटी दिखाना, मानना पड़ेगा। 88th के बाद जाके अर्जेंटीना ने कमबैक अपना शुरू किया था। 2-0 के डेफिसिट से 3-2 से उन्होंने मैच जीत लिया। बहुत सारे डिसीशंस जो थे ऑब्वियसली क्वेश्चनेबल हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं उसके बारे में, मगर सही में काफी बढ़िया मैच था। इतना रोमांचक मैच, मुझे लगता है कि केप वर्दे के मैच के बाद बाकी सारी टीम भी जो है थोड़ी ऐसे जग गई कि भाई बड़ी टीम है तो क्या हुआ, हम भी काम थोड़ी ना है, वो वाला एक एटीट्यूड जो आया। और इजिप्ट को मानना पड़ेगा, क्या बढ़िया खेला उन्होंने। आखिरी दम तक उन्होंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। एंड इससे एक और चीज हम ये देख सकते हैं कि अर्जेंटीना क्यों वर्ल्ड चैंपियंस है। उन्होंने फिर से प्रूफ किया है दुनिया को कि हम कोई ऐसी टीम नहीं है, वी आर वर्ल्ड चैंपियंस फॉर अ रीजन करके। काफी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग मैच जरूर था और आज के मैच के बारे में जरूर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर। कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात app and experience faster consultations. Download it today.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:28 होने वाले हैं और यहां पे जो है हम जरा गुफ्तगू करते हैं उस खेल के बारे में जो है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with...
3: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
0: तो भाई कल एक और मैच हुआ था, वो हुआ था स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच में। वो भी काफी बढ़िया मैच था। पूरी दुनिया जो है अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट की बात कर रही है, मगर स्विट्जरलैंड कोलंबिया मैच भी कम नहीं था। 4-3 से जो है स्विट्जरलैंड ने मैच जीता और नेक्स्ट स्टेज में वो अब बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। और उसके साथ साथ अगर हम देखें थोड़ा ध्यान से तो क्वार्टर फाइनल्स में फ्रांस वर्सेस मोरोको होगा कल, और उसके बाद फ्राइडे को स्पेन वर्सेस बेल्जियम होने वाला है, एंड संडे को दो मैचेस होने वाले हैं जो हैं नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड। तो काफी टाइट हो रहा है धीरे धीरे मामला। अब हमें देखना है कि कौन इस क्वार्टर फाइनल में से सेमीफाइनल में जाएगा। बहुत ही मस्त तरीके से जो है चीजें सेट हैं, ग्राउंड सेट है, कौन जीतेगा आगे नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, ये सब देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार तो हमें फिलहाल करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे इंतजार को और बढ़िया बनाने के लिए गाने तो हम रखेंगे, प्ले करेंगे आपके लिए, इसलिए बहुत ही मस्त एंटरटेनिंग मूवी दबंग से। एंड दबंग को नेशनल अवार्ड भी मिला है उस साल की सबसे एंटरटेनिंग मूवी का। इस मूवी के इस बहुत ही खूबसूरत गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
2: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन।

0: खलीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
4: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सदैव। स्टेशन क्लॉक में अभी 8:47 हो रहे हैं और यहाँ पे चलिए थोड़े मैसेजेस पढ़ लेते हैं हमारे पास जो जो आए हैं। और मुझे मोहम्मद यूसुफ खान साहब ने मैसेज किया था, उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग सदैव, कैसे हैं आप, होप वेल। और लास्ट में नहीं कोई नहीं सॉरी करके, मैं भी चौंक गया कि भाई क्या हो गया, सॉरी किस बात का बोल दिया मैंने, ऐसे क्या बोल दिया कि मुझे सॉरी बोल दिया। मैंने पूछा क्या हुआ करके, तो बोले कि स्पोर्ट्स के लिए बोला, मेरा कोई नहीं है फेवरेट, फुटबॉल मुझे समझ नहीं आता। कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मुझे भी पहले समझ में नहीं आता था, बट फिर मैंने देखना शुरू किया तो फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा, और भी पढ़ना शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। उसके साथ साथ मुझे मोहम्मद नईम भाई का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम भाई, गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ आपका दिन जो है काफी बढ़िया और बिंदास जाए। और साजिदुल्ला भाई का मैसेज आया है, लिखा है ऑलवेज गुड मॉर्निंग सुदीप भाई, हैव अ नाइस डे करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो है मैसेज किया, दिल खुश कर दिया मेरा। और इसी खुशी में काम करते हैं, एक और मैसेज आया था जो मुझसे छूट गया था, कुछ टाइम पहले आया था, तीर्थ प्रसाद जी का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग सुदेव करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन में विश करता हूं। अब इसी खुशी में काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्ले करते हैं एक फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे स्टेशन क्लॉक में 9:07 हो रहे हैं और यहाँ पे एक और खेल के बारे में जो है हम जरा बात करना चाहेंगे, जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चल रहा है। कल बहुत ही दिल दहला देने वाला एक मैच जो है हुआ। हम सब चाहते थे कि इंडिया जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से जीते, मगर इंडिया बहुत ही बुरी तरीके से हार गई है। 201 जो है इंग्लैंड ने स्कोर किया था, 20 ओवर में 7 विकेट उनके गिर गए थे और 76 पे इंडिया ऑल आउट हो गई। इंडियन बैटिंग लाइनअप से जो उम्मीद रहती है, वो जो हमें एक एक्सपेक्टेशन रहता है, वो बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाया। अभिषेक शर्मा 10 रन में आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी, जो काफ़ी सेलिब्रेटेड एक यंग स्टालवर्ट हैं, वो 13 रन में आउट हो गए। ईशान किशन 13 रन में आउट हो गए। श्रेयस अय्यर 5 रन में, जो कैप्टन है, वो आउट हो गए। अक्षर पटेल, मतलब इस टीम का हाईएस्ट स्कोर अगर किसी ने किया है वो ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी ने किया था, 13 रन ईच। 76 पे इंडिया ऑल आउट हो गई। 125 रन से इंग्लैंड ने जो है मैच जीत लिया। तो बैटिंग के ऊपर और पूरे टीम के मोराल के ऊपर जो है एनालिसिस बिल्कुल होना चाहिए। क्या हो रहा है, कहाँ पे लैक आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है, इसको फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आयरलैंड के साथ भी हम हार गए। इंग्लैंड के साथ जो है तीसरा क्या कहते हैं T20 था ये, जिसमें इंग्लैंड 2-0 से लीड कर रहा है। अभी 5 मैच का सीरीज है ये। देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से टीम कमबैक करती है, किस तरीके से इन मिस्टेक्स को क्लियर करके टीम आगे बढ़ती हो, तो हमें टाइम देना पड़ेगा। बट anyway, फिलहाल यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं। चांद मेरा दिल मूवी का गाना सुनते हैं तुषार जोशी की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

0: All F Short Break. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM, ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
4: ਆਲ ਆਫ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ।
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम App and experience faster consultations. Download it today.

0: कम बैक, यू आर लिस्निंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 9:20 हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे साथ चाची 420 पहुंच चुकी है, सॉरी तनीषा पहुंच चुकी है। तनीषा मैडम वेलकम वेलकम। वो कमल हसन वाले का एंगल दिखाओ मुझे इसलिए नहीं मजाक कर रहा था मैं वैसे no. अरे बुरा लगा आपको?
1: नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल।
0: अच्छा ठीक है, तो ड्रीम गर्ल,
1: हाउ डेयर यू?
0: आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने
1: आज पूरा दिन तू इसके लिए पे करेगा।
0: एक मिनट, थोड़ा माइक के पास आके बोलोगे?
1: आज पूरा दिन तू इसके लिए पे करने वाला है।
0: ये पार्किंग फी है या टोल फी है, कौन सा है? अच्छा कितना है इसका फी ये तो बताओ। क्या
1: आई विल डिसाइड।
0: ओके अच्छा ठीक है। यहाँ पे वैसे इंडियन टीम के हाल के बारे में हम बात कर रहे थे। इंडियन टीम ने कल टेस्ट कह रहा हूँ मैं,
1: है बुरा है अच्छा है।
0: नहीं T20 खेल रहे थे, T20 में बहुत बुरी तरीके से हार गए, 125 रन से जो है वो इंग्लैंड से हार गए। और बहुत सारे लोग जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोचिंग को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई गंभीर को हटाओ, कुछ हो नहीं रहा उनसे करके। मगर इसी गंभीर के कोचिंग के अंडर ही उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जीता था।
1: वही बात है ना, लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है।
0: वही प्रॉब्लम तो यही है, ये फिकल माइंडेड रहते हैं।
1: I also saw posted today, okay. दादा की मूवी का 14th मई को आने वाली है। अच्छा, राजकुमार राव इज प्लेइंग दादा।
0: ओह वाओ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। वैसे एक और चीज मैं देख रहा था अभी, मैं दिलजीत के बारे में ऐसे देख रहा था यार, दिलजीत के गाने सुन रहा था और मैंने ऐसे सर्च किया, दिलजीत अमेरिकन सिटीजन बन गया।
1: Yes.
0: अरे मुझे तो बताया नहीं। मैसेज करना है पाजी, बताया नहीं तुझसे।
1: हाँ, वो आगे से कहेगा मुझे नहीं फर्क पड़ता, तो बुरा लग रहा है। तो that's what I like about him. He is so carefree. मतलब he knows that I am not supposed to hurt people or I am not supposed to be arrogant because of all the love I'm getting.
0: True.
1: But he's so carefree and so relaxed. He just lives his life the way he wants.
0: अभी recently मैंने एक ये देखा था, क्लिप देखा था जहाँ पे राहुल दुआ बात कर रहा था दिलजीत के बारे में। तो दो चीजें उन्होंने बोली थी मेनली, एक अनुपमा चोपड़ा के साथ का जो इंटरव्यू था उनमें उनसे पूछा कि आप खाली वक्त में क्या करते हैं। मैं कुछ नहीं करता।
1: तो
0: कुछ नहीं करना चाहिए, वो उसके अलग मजे होते हैं करके।
1: Exactly.
0: मैं 100% सहमत हूँ दिलजीत पाजी से इस मामले में, क्योंकि कुछ नहीं करने में बहुत मजा आता है
1: भाई, बहुत बढ़िया आदमी यार।
0: बट उससे ज्यादा बढ़िया चीज उन्होंने ये बोली थी कि एक बार स्टेज से वो एड्रेस कर रहे थे अपने ऑडियंस को कि जैसे ये फोन का एल्गोरिदम होता है, ठीक है, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम होता है, वैसे लाइफ का भी एल्गोरिदम होता है।
1: Right.
0: आप अच्छी चीजें फीड करोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, आपके लिए भी अच्छा ही होगा।
1: Exactly.
0: और क्या रिफाइंड थॉट है, क्या थॉट प्रोसेस है, मतलब
1: बहुत लाइक और बहुत सिंपल।
0: हाँ, कुछ ज्यादा फ्लैशी नहीं, कुछ नहीं।
1: Exactly.
0: यस यस यस। और यहाँ पे ज्ञान देने के बाद हम दोनों जरा पानी पी कर आते हैं।
1: उधारी का ज्ञान,
0: खुद का ज्ञान तनीषा मैडम के पास तो है वैसे। हम तो यार सीख रहे हैं वैसे अभी भी।
1: जी।
0: तो हम जरा फीस चुका कर आते हैं, आप फिलहाल गाने सुनिए, यहाँ पे एंजॉय कीजिए और कहते रहिए
1: जियो बिंदास
0: मेरी जान। अब सुनिए।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी. विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
3: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात app and experience faster consultations. Download it today.

0: वेलकम बैक, ये है बिंदास मॉर्निंग्स। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव और मेरे साथ है हंसती हुई खिलखिलाती हुई क्या ये कौन से दो रंग है आपके शर्ट में?
1: पिंक एंड ऑरेंज।
0: इट्स नॉट मैजेंटा?
1: नो,
0: इट्स पिंक।
1: इट्स फ्रॉम दोस फैमिलीज।
0: ओके,
1: डिटेल में जाने की जरूरत नहीं।
0: अच्छा, हम तो
1: ज्यादा तुझे बड़ा पता है?
0: नहीं पता नहीं है, एक आध के नाम पता है बस, इसलिए तो मैंने सोचा थोड़ा शो ऑफ कर दूं मैं। क्या यार आप ऐसे, अब इंसान सीखने की कोशिश कर रहा है, आगे से थोड़ा एनकरेज करना चाहिए ना।
1: बेहतर चीजें सिखा रही हूँ बेटे मैं आपको।
0: क्या बेहतर चीजें सिखा रही
1: हूँ? सीख गया ना अब कैसे मुझे इंट्रोड्यूस करना है।
0: कैसे? ये पहले भी ऐसे ही करता था मैं।
1: हाँ, उसके पहले तो नहीं किया था, पर
0: वो तो मैंने सच्चाई वो सॉरी मैंने ऐसे ही बोल दिया था।
1: डबल हो गया तेरा।
0: क्या डबल? कौन सा फाइन?
1: तेरा फाइन डबल हो चुका है।
0: कौन सा फाइन डबल हो चुका है?
1: जो पिछली लिंक में लगा था।
0: कौन से लिंक पे
1: बेटा? तू ठीक है?
0: अच्छा ठीक है। यार देखिए, फीफा वर्ल्ड कप जो है जोरों शोरों से चल रहा है।
1: yes.
0: बहुत सारे प्लेयर्स का, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स का ये लास्ट फीफा वर्ल्ड कप हो सकता है।
1: पीपल आर गेटिंग सो इमोशनल, इवन द प्लेयर्स।
0: जी, जैसे कि रोनाल्डो कल मतलब पोर्चुगल बाहर हो गई थी, सो ही सेड कि ये मेरा लास्ट वर्ल्ड कप रहेगा। नेमार सेड कि मैं ब्राजील के से मतलब नेशनल टीम से रिटायर कर रहा हूँ, करके क्लब्स में फिर भी रहेंगे शायद कुछ टाइम के लिए, बट ही इज रिटायरिंग फ्रॉम ब्राजील नेशनल टीम। वो बहुत बड़ा एक शौक है। प्रोबेबली मेसी का भी, मतलब एज दिस वर्ल्ड कप प्रोग्रेसेस जल्दी खत्म हो जाएगा।
1: ऑल दीज लेजेंड्स जो कि यू नो लाइक फैन फेवरेट्स है, वो एक साथ चले जाते हैं। क्रिकेट में भी सेम चीज हुई थी।
0: नहीं, वो बात ही है ना कि वो एक ही साथ आए थे।
1: हाँ, पर इट डजंट,
0: एक ही टाइम के आसपास आए थे और वो ऐसे ही तो गया यार। अब देखिए, अब रोनाल्डो की मेसी का ले लेते हैं, 38 ईयर्स के हैं वो। 38 ईयर्स में इस लेवल पे फुटबॉल खेलना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जिस तरीके से गेम को कंट्रोल कर रहे हैं, और कल का मैच बहुत बड़ा एक टेस्टमेंट था इस फैक्ट का कि ही कैन कंट्रोल द आउटकम्स अगर वो अपने एलिमेंट में आ गए। इनिशियली जरूर एक वो धक्का लगा, मगर जैसे जैसे गेम के फाइनल मोमेंट्स में गए, उन्होंने मोमेंटम
1: अपने मूवी वाला सीन हो गया ना कि पहले तो हीरो बहुत पिटता है, फिर एकदम से लगता है कि अरे मेरी हीरोइन को कोई परेशान कर रहा है।
0: जी, फिर इससे पता चलता है कि हीरो कितना सेल्फलेस है, क्योंकि उसको इतना बुरा उसके साथ व्यवहार किया, इतना बेचारे को उन्होंने मुखमंडल में देह स्पर्श देने के बाद भी हीरो कह रहा है कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे, मगर जैसे ही किसी ने हीरोइन पे हाथ लगा दिया भाई तूफान। अरे वैसे एक मुझे याद नहीं कौन से लैंग्वेज की मूवी, आई डोंट नो इफ इट्स तेलुगु और कन्नड़ा या फिर तमिल, आई डोंट नो कौन से लैंग्वेज की है, माइट बी तेलुगु और कन्नड़ा, ठीक है इन दोनों में से कोई है। एक सीन था जहाँ पे एक बंदे के पीठ के पीछे एक्स से मार देते हैं, ठीक है, और उसे ट्रेन से गिरा देते हैं, और वो वहां से उठ के ट्रेन और उसके पीछे एक्स लगा हुआ है, ठीक है, वो लगा हुआ है और वो ट्रेन में ऊपर चढ़ रहा है, लड़ रहा है भाई। मैं ये देख रहा था कि ये क्या चल रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। और सिमिलरली कुछ टाइम पहले मैं तन्मय रिएक्ट देख रहा था, तो वरुण धवन का एक सीन देखा मैंने। यार मुझे नहीं बताओ कौन सी मूवी है, ठीक है, मुझे जानना भी नहीं हो कौन सी मूवी है, मगर आप सुनो मेरी बात ध्यान से, कितना बढ़िया सीन था। वो प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए सीढ़ियां नहीं होती रेलवे स्टेशन में, ठीक है, और जो वो जो ब्रिज होता है, ठीक है, वो ब्रिज के वहां से अपना वरुण धवन चल के जा रहा था, उसने देखा नीचे एक बच्चा रेलवे ट्रैक पे बैठा है, उसकी मम्मी को पता नहीं और किसी आसपास के किसी को पता नहीं, सारे लोग ऐसे ऑब्लिवियस है उस फैक्ट के। वरुण देखता है, वरुण चिल्लाता है, इंडिया के रेलवे स्टेशन में वो चिल्लाता है जहां पे ट्रेन की आवाज कभी हमें सुनाई नहीं देती शोर के कारण।
1: करेक्ट।
0: और सब लोग ऐसे देखते हैं, बच्चे को देखते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, और वरुण वहां से कूदता है ट्रेन के ऊपर, चलती हुई ट्रेन के ऊपर से रेस करता है
1: और
0: ट्रेन को हराता है, बच्चे को उठा के साइड में चले जाता है। मैं सोचा कि भाई मैंने 2 साल फिजिक्स पढ़ी है, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, मतलब स्कूल में, फिर मैंने इंजीनियरिंग फिजिक्स भी पढ़ी है, ये सारे रूल ब्रेक कर चुके हैं सारे रूल। मुझे लगता है मुझे कभी कभी फिजिक्स के लिए इतना बुरा लगता है स्पेशली, बट यू नो व्हाट, इट्स फॉर एंटरटेनमेंट, राइट, हम थोड़ा ऐसे चिल आउट करने के लिए देखते हैं वैसे ही। और इससे हम थोड़ा ऐसे डाइग्रेस हो गए थे इशू से, हम बात कर रहे थे लास्ट डांस के बारे में। बहुत सारे प्लेयर्स का लास्ट डांस है, क्रिकेट में भी हमने देखा रोहित का, कोहली का, तो बहुत बुरा लगता है जब हमारा एक पसंदीदा प्लेयर जब जाता है। और यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए आज 8 तारीख है, आज सौरव गांगुली का बर्थडे है और दादा का बर्थडे है, और दादा के बारे में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो ये है कि उनको जब टीम से निकाल दिया था, कैप्टनसी से हटा दिया था, तो उनको एक ब्रांड ने अप्रोच किया कि आप ऐड कीजिए हमारा, तो उस ब्रांड ने जब अप्रोच किया तो ब्रांड ने बोला था कि यार ऐड में आपको बोलना पड़ेगा कि मैं सौरव गांगुली हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा, तो वो थोड़ा ना वो पिटी वाला एक फील था उस ऐड का, ऐसा लगा हाँ, तो दादा बोले कि भाई प्रिंस आदमी हम ऐसे नहीं करते, ठीक है, ऐसे वैसे नहीं होता, हम नहीं करेंगे। तो फिर ब्रांड वालों ने बोला सर ठीक है आपकी बात अपनी जगह सही है, मगर ब्रांड में जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना उसमें आपके ऊपर आपका कोई हक नहीं है कंटेंट को ये करने का, आप कंटेंट में सजेशंस नहीं दे सकते, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, एंड यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू इट। वो करते हैं वो एड, और उस एड का फेमस लाइन है हाय मैं हूँ सौरभ गांगुली, नाम तो सुना ही होगा आपने। उसके बाद फिर वो पूरा इंसिडेंस जो है बताते हैं, एंड समहाउ इट डिड वंडर्स, एकदम से पूरा नेशनल सेंटीमेंट जो है चेंज हो गया, एवरीबॉडी वाज लाइक ब्रिंग बैक सौरभ गांगुली। उसके साथ साथ इंडियन टीम साइड में और बुरा खेल रही थी, ठीक है, और पैरेलली दादा ने डोमेस्टिक सर्कल में इतना बढ़िया खेला, इतना बढ़िया खेला कि जिन सेलेक्टर्स ने उन्हें निकाल दिया था, जिस बोर्ड ने उन्हें निकाल दिया था, दे कुड नॉट इग्नोर हिम, विच गोज ऑन टू प्रूव द फैक्ट दैट यू शुड बी सो गुड दैट Your haters cannot ignore you.
1: Exactly.
0: और दादा यही सिखाते हैं हमें अपनी लाइफ से, और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और तेरा दीदार गाना प्ले करते हैं,
1: ठीक है,
0: जन्नत टू का, और कहते हैं
1: जी बिंदास।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 million reals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. Download it today.
4: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
5: गुलराज सिंह
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
5: जियो बिंदास.
6: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

ペパムビカガーナ。अरिजीत सिंह और पूजा तिवारी की आवाज में आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई धीरे धीरे ऐसे टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है क्योंकि 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे कशिश आ जाएगी, तो खुली बाहों से कशिश का स्वागत कीजिएगा। जितना प्यार मुझे दिया है उतना उससे ज्यादा प्यार कशिश को दीजिएगा। जाते जाते जाते यही हम याद दिलाएंगे आपको कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए हैव फन एंड जियो बिंदास।

कहेंगे कुमार सानू जी ने आवाज दी और आपकी जानम यानी आपकी कसूस जो है वो आ गई आपसे बातचीत करने के लिए. वेलकम एंड 106.3 रेडियो आरएफ पर मैं हूँ आपकी कसूस जो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. कैसे हैं आप लोग? गर्मी हवा, गरम गरम हवा साथ में कैसी लग रही है बताइए मुझे 3311063 पर आकर. और आज का दिन जो है वो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कल मैं जैसे बात कर रही थी ना कि डोपामीन ड्रेसिंग की, यानी आप अपने फेवरेट कलर के कपड़े जो है वो अगर पहनते हैं तो आपका मूड स्लाइटली बेटर हो जाता है, या अगर आप जैसे चटैक कलर के कपड़े पहनते हैं तो आपको अच्छा लगने लग जाता है. बस उसी को फॉलो करते हुए आज मैं अपना फेवरेट कलर यानी ग्रीन कलर वो भी एकदम सबसे चटाक शेड में पहनकर आ गई हूँ. मैं तो डोपामीन ड्रेसिंग जो है पूरी तरीके से कर रही हूँ. आप बताइए कि आप मेरे उस सेगमेंट से कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं. फिलहाल आज लाइफ मस्त है की शुरुआत करते हैं एक अमेजिंग वाले गाने के साथ, चांद मेरा दिल मूवी से. इसे एंजॉय कीजिए. आकर जरा मौसम में क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं, होने वाले हैं और टेम्परेचर क्या है इस वक्त वो बताऊंगी मैं आपको. सो स्टे ट्यून्ड रहो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो गया है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:11. स्टे ट्यून्ड रहिए जियो बिंदास.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
3: और 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: मैं हूं अनिल कपूर, वीडियो ऑल

0: निगम की आवाज में ये ट्रैक एंजॉय किया हमने 106.3 रेडियो अलिफ पर। वेलकम बैक, मैं हूँ आपकी कसूर सन, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड यार देखो, कल जब मैंने ये कहा था कि बहुत ज्यादा तेज गरम गरम हवाएं चलने वाली हैं, तब मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इतनी तेज हवाएं चलेंगी। मतलब मैं और सिमरन जो है नीचे जूस पीने के लिए, मतलब हमारी बिल्डिंग से नीचे उतरे जूस पीने के लिए, एंड हमने जैसे ही अपनी बिल्डिंग से बाहर पैर रखा, जो बाल हमारे राइट साइड थे वो अपने आप लेफ्ट साइड पे आ गए। इतनी तेज जो है वो हवा चल रही थी। एंड अगर मैं लिटरली कहूँ ना, मेरे बाल अगर थोड़े से गीले हो, मैं मतलब बस नहा के बाहर पैर निकालूं तो बाल अपने आप सूख जाएंगे, किसी ड्रायर की जरूरत नहीं है, डायसन हूँ। So, देखिए यार, आज भी कुछ ऐसा ही मामला रहने वाला है। तो मौसम के मामले में आज मैं आपको बता दूं कि 42 डिग्री सेल्सियस इस वक्त करंट टेम्परेचर हो रहा है दोहा में, एंड हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 44 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। सो बस मैं तो यही कहूंगी कि देखो, पानी पीते रहना है आपको, और दूसरी चीज है कि आपको सनस्क्रीन लगा के रखनी है, बिकॉज अगर सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो फिर टैनिंग हो जाएगी, और फिर टैनिंग हो जाएगी तो इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स जो है वो आपको बचा नहीं पाएंगे। देखो कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि इस आवर की जरूरत अब बन गया है, क्योंकि इतने जो यू नो इतनी गर्मी के बीच में कुछ तो कूल चाहिए हमें, इसीलिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर। गाना जो है उसका नाम है झोल, तो बिना किसी झोल किए जो है हम आगे बढ़ते हैं और ये गाना सुनते हैं। आप अपनी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिफ पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

देखिए इस बात में कोई राज नहीं है कि जिस मूवी का ये गाना है उसका नाम राज है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। अब देखिए यार, अपने जीवन में एक अच्छा सा पार्टनर जो है वो सबको चाहिए होता है, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए होता है, ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो आपको हर चीज में सपोर्ट करे। लेकिन अगर मैं जो है हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर मैं किसी दिन जो है किसी चीज़ के लिए कैपेबल नहीं रही, मतलब अगर मुझे चोट लग गई, मैं गिर गई क्योंकि मैं क्लम्जी हूँ, तो फिर क्या वो इंसान मेरी हेल्प करेगा मेरे लाइफ को जो है आगे चलाने में, मुझे काम करने में? मतलब सपोज अगर मुझे 10 दिन के लिए जो है ऐसा हो ना, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, गॉड फॉरबिड, लेकिन अगर सपोज मैं गिर गई चलते चलते एंड मेरे जो है एंकल में स्प्रेन आ गया है एंड अब मैं जो है 10 दिन बेड से नहीं उठ सकती, तो क्या मेरा पार्टनर जो है वो मुझे हेल्प करेगा हर चीज़ में? अगर करेगा तो वेरी नाइस। लेकिन इंटरनेट जो है वो दिन ब दिन हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहा है। कोई ना कोई ऐसी रील आ जाती है जिसे देख के सब ये कहते हैं कि यार देखो प्यार हो तो ऐसा हो, लेकिन प्यार आखिर कैसा होना चाहिए तो कोई बता ही नहीं रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह एक वीडियो जो है वो सरफेस कर रही है, एक वीडियो वायरल हो गई है जिसमें बेबी डू डाई डू ये जो मूवी है इसको थिएटर में देखने के लिए एक कपल पहुंचा था एंड वीडियो में दिख रहा है कि वो जो लड़का है वो इस पूरी मूवी में क्या क्या हो रहा है वो इशारों में यानी साइन लैंग्वेज में अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी पार्टनर को, अपनी वाइफ को जो है वो दिखा रहा है एंड बता रहा है कि यार देखो ये हो रहा है या ये डायलॉग में बोल रहा है, क्योंकि शायद वो जो लड़की है वो सुन नहीं सकती थी, सो उसे इशारों में साइन लैंग्वेज में जो है वो पूरी फिल्म समझा रहा है। बताओ यार कितने एफर्ट्स करते हैं लोग एंड आपको जो है एक नॉर्मल मूवी जो है अपने पार्टनर को आप नहीं दिखाने ले जा पा रहे हो। यार बुरा लगता है मुझे, देखो लड़कियों कलेश करने का एक नया रीजन दे दिया है मैंने आपको। वैसे इस वीडियो से यही पता चलता है कि अगर कोई करने वाला होता है ना तो वो करता है, वो बहाने नहीं बनाता है। तो फिलहाल बहाने ना बनाते हुए एक बहुत ही अमेजिंग गाना वांटेड मूवी से, आई नो यू वांटेड इट, सो इसीलिए वांटेड मूवी का एक ट्रैक जो है आपके रेडियो सेट पर, इस गाने को एंजॉय करो। अगर जो है आपको मैं स्ट्रेस से लड़ने का एक फनी तरीका जो है वो बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड और आपकी कोशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: गाने का नाम और रंगरेज, मूवी का नाम भाग मिल्खा भाग, एंड एब्सोल्यूट फेवरेट गाना यार ये मेरा। और बस ये गाना सुनने के बाद मूड थोड़ा और बढ़िया बढ़िया सा हो गया, तो बस इसीलिए आपका मूड भी बढ़िया करने आ गई हूँ मैं। हूँ आपकी कसम शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड यार वादे के अनुसार आपको मैं बताने वाली हूँ कि यार ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपना स्ट्रेस जो है वो फन तरीके से कम कर सकते हो। तो देखो वैसे तो बहुत सारी अजीबोगरीब मैंने चीजें आपको बता दी हैं, लेकिन आज वाला हैक आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करेगा अगर आपको गाना गाना आता है तो। और अगर गाना गाना नहीं आता है तो और अच्छी बात है, और अच्छे से वर्क करेगा। सो अब आपको अपने फ्रस्ट्रेशन को जो है वो गा के बाहर निकालना है, यानी गाने के टोन में आपको अपना इरिटेशन जो है वो निकालना है। सपोज अगर आप इरिटेटेड हैं, आपका चार्जर नहीं मिल रहा है, तो बस आपको सुर लगाना है कि मेरा चार्जर कहाँ है ऐसे, मतलब। और अगर आप गंदा गाते हैं, आपको गाना नहीं आता है, तो और ज्यादा फन होगा ये, जैसे कि मेरे साथ होता है। खैर ठीक है, अगर पर ये वाली मैं आपको कॉशन देना चाहती हूँ कि अगर आप ये बाकी सब लोगों के सामने करने वाले हैं तो अपना मजाक जो है वो आप बनवा सकते हैं अगर आपको गाना नहीं आता है। सो जब आप अकेले हो तब आप ये तरीका जो है अपना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस बाहर निकल जाएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन जो है वो गुस्से के तौर पर नहीं आएगा, बल्कि आपको खुद मजा आ जाएगा कि यार वाह यार वाह यार टैलेंटेड तो देखो मैं हूँ। फिलहाल इस फ्रेश आइडिया के बाद ऑली फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो सुनने का वक्त हो गया। इस गाने को एंजॉय करो।
1: Radio

0: Sadang Trek. Brought to you by Danadal Pahar, the ultimate Katri adventure. Sukh Waqif Alkhol.
1: तो जी वक्त हो गया है आपको वक्त बताने का। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:00, मतलब अभी तो 10 मिनट हो रहे हैं लेकिन अब 11:11 हो चुके हैं। सो स्टे ट्यून्ड रहिए रेडियो ऑल पर और कहते रहिए जियो बिंदास।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे, जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के 4 रास्ते, पहला अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए 1 कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000+ है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए 1 एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
0: हेलो टू ऑल द लिसनर्स ऑफ

0: देख के इतनी तारीफ करेंगे मेरी। आई नो मेरा चेहरा खिला खिला है, तो ऑब्वियसली आप तारीफ करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। देखो कोई तो कर नहीं रहा है तारीफ, तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद ही क्रेडिट ले लो गानों का कि गाने अपने ऊपर ही बने हैं। देखो इससे क्या होता है ना कि स्ट्रेस कम रहता है। खैर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने के लिए आ गई हूँ। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कसर शो, आपके लिए लाइफ मस्टर लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए आज हम बात करने वाले हैं एक फिनोमेना पे जिसका नाम है नेगेटिव लीप सेकेंड। हाँ जी, सो अर्थ जो है वो पिछले कुछ वक्त से थोड़ा ज्यादा तेज जो है स्पीड में घूम रही है, जिसकी वजह से 2029 तक हमें हमारी क्लॉक से जो है हो सकता है कि एक सेकेंड डिलीट करना पड़ जाए। और इस कॉन्सेप्ट को जो है साइंस ने नाम दिया है नेगेटिव लीप सेकेंड। पूरी बात ये है कि देखिए साइंस ये कहती है कि वैसे तो मून की वजह से हमारी जो अर्थ है वो धीरे धीरे रोटेट कर रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक यू नो बदलाव आया है, एक चेंज आया है। अर्थ की स्पीड जो है वो धीमी होने की जगह थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है। एंड ऐसा हो सकता है कि 2029 तक ये इतनी तेज हो जाए कि हमें हमारी घड़ियों से एक सेकेंड जो है वो कम करना पड़े, यानी 24 घंटे में से एक सेकेंड हमें कम करना पड़े। अब देखिए मैं आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ कि साइंटिफिक फिनोमेना पे अगर थोड़ा सा हंसी मजाक किया जाए तो एक सेकेंड की कीमत बहुत ज्यादा होती है। सो वो एक सेकेंड जो है अगर कम हो जाएगा तो बताइए कि क्या एक सेकेंड में जो है हम जो करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। 3311063 ये मेरा नंबर है। आई नो बहुत फनी एंड बहुत अजीब सा ये क्वेश्चन है, लेकिन इस पे थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो कुछ फनी सा निकल कर आएगा। तो जल्दी से मुझे मैसेज करो 3311063 पर कि ऐसी क्या चीज है ये जो एक सेकेंड हम कम करने वाले हैं, इसमें एक सेकेंड में हो सकती थी, अब वो एक सेकेंड कम हो गया है तो शायद हम नहीं करेंगे। एक सेकेंड में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हो सकती हैं, 3311063 पर। फिलहाल एक सेकंड की देरी से जो है आपको मैं कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है कूल सॉन्ग।

Johnny Gaddar, Movie से जो है ये ट्रैक आपने enjoy किया. Movie body baby, move your body. थोड़ा सा movement करेंगे तो body जो है वो active रहेगी. एंड पता है जब आप प्लैंक कर रहे होते हो ना जिम में, तब आपको रियलाइज होता है एक एक सेकेंड जो है वो कितना लंबा है. बिकॉज आपको होल्ड करना होता है अपना कोर, एंड आप बस जो है अपनी लाइफ के लिए फाइट कर रहे होते हो कि जल्दी इससे 30 सेकेंड हो जाए. तब एक एक सेकेंड ऐसा लग रहा होता है कि यार कितनी देर हो गई, कितनी देर हो गई, कितनी देर हो गई. इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक सेकेंड की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. वैसे देखो एक सेकंड की कीमत तो तब भी समझ आती है जब वो कम हो जाता है. सो जैसे मैंने आपको बताया कि एक रिसर्च जो है वो ये कहता है कि एक फिनोमेना हमें 2029 तक देखने को मिलेगा, जहां पर हमारी जो अर्थ है वो उसकी स्पीड जो है घूमने की वो थोड़ी सी बढ़ गई है, जिस वजह से हो सकता है कि 2029 तक हमें हमारी घड़ियों से एक सेकेंड जो है वो कम करना पड़े. अब आप लोग कहेंगे यार एक सेकेंड में क्या ही होता है, एक सेकेंड में बहुत कुछ होता है. एक सेकेंड में जो है हम लोग आजकल जो है दो रील्स जो है वो स्किप कर देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, लोगों को ओके वाला मैसेज कर देते हैं, बहुत कुछ हो जाता है एक सेकेंड में. ओके एंड अगर हम बात करें मतलब अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो आप जो है सिग्नल तोड़ देते हो एंड फिर आपको फाइन लग जाता है. सो एक सेकेंड में बहुत कुछ होता है, इसीलिए रफ्तार रफ्तार चलिए और जो है बस लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि एक एक सेकेंड बहुत कीमती है. अभी भी आपके पास मौका है 3311063 पर जो है मुझे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि एक सेकेंड में ये जो कम होने वाला है, मतलब 2029 तक हम अपनी घड़ियों में एक सेकेंड कम करने वाले हैं, इसमें आप क्या कर सकते थे. जैसे यूसुफ खान जी ने जो है मुझे मैसेज किया कि एक सेकंड में क्या ही होता है, बताइए आपको क्या लगता है एक सेकंड में क्या ही होता है. फिलहाल रफ्ता रफ्ता गाना जो है तेजी से आपके तरफ आ रहा है, आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है. सो वॉल्यूम बढ़ाओ और एंजॉय करो. मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में. स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: लाइफ बहुत अच्छी थी जब तक हम कैलाश खेर के गाने जो है वो बार बार सुना करते थे, रिपीट पे सुना करते थे एंड उनको डिकोड करने की कोशिश करते थे कि टूटा टूटा एक परिंदा कैसे टूटा, आखिर कैसे टूटा होगा ये परिंदा। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसुस एंड सो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड देखो यार, वैसे तो जेंजीज की लाइफ सबसे ज्यादा मस्त चलती रहती है, लेकिन बीइंग अ जेंजी एक प्रॉब्लम है मुझे जेंजीज से। मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम पे एंड मैंने एक ट्रेंड देखा जहां पर जेंजीज जो है वो लिस्ट बना रहे हैं, किसी खाने की चीज की नहीं, ग्रोसरी की नहीं, या कौन कौन से बिल देने उसकी लिस्ट नहीं, जस्ट लिस्ट ऑफ थिंग्स आई वॉन्ट टू लिस्ट। मतलब ऐसी कौन कौन सी लिस्ट हमें बनानी चाहिए जिससे हमें अच्छा लगे, इस बात की लिस्ट बना रहे हैं कि लिस्ट ऑफ थिंग्स आई वॉन्ट टू डू बिफोर आई एम 25, लिस्ट ऑफ दिस, लिस्ट ऑफ दैट। सो ये लिस्ट बनाने से क्या ऑब्सेशन आ गया भाई जेंजी इसको, मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर मुझे भी आ जाए कुछ टाइम पे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। फिलहाल ऑल फिर सॉन्ग ऑफ द आवर आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है क्योंकि अमेजिंग सॉन्ग की लिस्ट जो है वो मैंने आपके लिए बनाई हुई है।
1: रेडियो

0: fresh song of the hour.
1: Yegana.
2: कॉकटेल टू का ये गाना आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है. वॉल्यूम बढ़ा के एंजॉय करो. थोड़ी सी देर में फैशन की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगी. अगर कुछ बहुत ही स्पेशल है जो आपकी वार्डरोब में उसे कैसे स्टाइल कर सकते हो उस पर बात करेंगे. फिलहाल ये गाना एंजॉय करो और आपकी गसुस के साथ कहते रहो जियो बिंदास.

बस एक मोटिवेशनल गाना ही तो चाहिए होता है जीवन में जो है अच्छा काम करने के लिए, और मुझे मेरा मोटिवेशनल गाना मिल गया है। और बस इसी मोटिवेशन के साथ जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि फैशन की दुनिया में इस वक्त क्या इन ट्रेंड है। सो देखिए, वो इंसान हूँ मैं जो एटलीस्ट 24 घंटे में से 25 घंटे जो है वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती है, एंड पिंटरेस्ट स्क्रॉल करना जो है मैंने अभी अभी शुरू किया है। सो एक चीज जो आपको भी अपने इंस्टाग्राम पे काफी दिख रही होगी वो है स्कार्फ का यूज। सो जैसे जैसे समर की हीट जो है वो हमें जो है परेशान कर रही है, वैसे वैसे जो है स्कार्फ का यूसेज जो है वो बढ़ गया है। लेकिन अब स्कार्फ को जो है लोग अपने सर पे बांधने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, ना ही अपने गले में बांधने के लिए यूज कर रहे हैं, ना ही अपने बैग्स को जो है डेकोरेट करने के लिए कर रहे हैं, बल्कि स्कार्फ को अपनी कमर पे बांध रहे हैं। यस, सो इन ट्रेंड है स्कार्फ को एज अ बेल्ट, या अगर मैं बोलूं अपने यू नो वेस्ट पे उसे जो है टाई करने का काफी ट्रेंड चल रहा है। इससे आपकी बॉटम्स को जो है एक नया एक बोहो लुक जो है वो मिलता है, एंड काफी ट्रेंडी लगता है। सो एक बार ट्राई करो, अगर आपके पास कोई स्कार्फ है सो आप उसको जो है ट्राइंगल में फोल्ड कीजिए एंड अपनी वेस्ट के अराउंड बांध लीजिए। इससे जो है क्या होता है कि आपके जो बोरिंग आउटफिट है, जो बेसिक आउटफिट है, उसमें जान आ जाएगी। सो बस अपने इसी यू नो फैशन वाले ज्ञान के साथ एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना जो है वो आपके रेडियो सेट्स पर मैं लेकर आ रही हूँ। वेलकम टू द जंगल का एक उच्चल लंबा कद। हाँ, मतलब देखो ये रिक्रिएशन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है, लेकिन ये जो ओरिजिनल गाना है वो मुझे बहुत पसंद है। सो उसी बहाने ये भी थोड़ा बहुत तो अच्छा लग ही रहा है। सो इसीलिए उच्चल लंबा कद फॉरएवर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। इस गाने को एंजॉय कीजिए, बाकी मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। व्हाट्सएप पे क्या कुछ नया हो रहा है ये मैं बताऊंगी, तब तक आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो 3311063 पर कि क्या हाल चाल है आपके और आपकी कशिश के साथ कह दे रहा हूँ जियो बिंदास।

0: Trek. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त जो है स्टूडियो क्लॉक भी हो रहे हैं 12:11. स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास.
2: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो.

0: लिए आप लोगों की बात कर रहे हैं कि मेरे दिल के भी दिल में सिर्फ आप लोग बसते हैं। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ अंधाधुन का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया आपके रेडियो सेट पर। अब देखिए यार, मैंने जैसे जाने से पहले जो है ये कहा था कि व्हाट्सएप के बारे में कुछ बात हम करने वाले हैं। सो व्हाट्सएप पर अब आपको जो है ये कन्फ्यूजन नहीं हुआ कि ये जो सामने वाला जिसे हम मैसेज कर रहे हैं ऑनलाइन है या नहीं है। मतलब हाँ, आप हम सबको जो है एक ऑनलाइन लिखा हुआ ऊपर दिखता है चैट के ऊपर, जब भी हमारा जो भी मतलब जिसके भी हम मैसेज भेज रहे हैं वो ऑनलाइन रहता है। तो लेकिन अब इंस्टाग्राम की तरह व्हाट्सएप पर भी एक ग्रीन डॉट दिखेगा जब भी कोई ऑनलाइन होगा। वैसे प्राइवेसी के चलते इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, तो ज्यादातर लोग इसे ऑलरेडी बंद कर देंगे, लेकिन फिर भी अगर आप बंद करना भूल गए तो रात में फोन चलाते हुए मम्मी पापा को पता चल जाएगा कि अरे ये तो कोई ऑनलाइन बैठा हुआ है। दो लोगों के जो है रात में ऑनलाइन होने पर जो है पूरे ऐसे किस्से कहानियां बन जाएंगी कि ये दोनों ना रात को 1-2 बजे ऑनलाइन दिख रहे थे साथ में और एक साथ ऑफलाइन चले गए थे। कलेश भी काफी सारे हो सकते हैं कि मुझे तो तुमने बाय बाय कर दिया था, उसके बाद जो है क्यों ग्रीन डॉट दिख रहा था। सो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो व्हाट्सएप को मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी पता नहीं क्यों ये नए नए फीचर्स पे काम कर रहे हैं। बट हर फीचर के पीछे जो है एक स्टोरी होती है, एक यूजेज होता है। सो लेट्स सी ये वाला जो अभी फीचर है जो व्हाट्सएप रोल जो है डाउन करने वाला है, ये अभी जो है टेस्टिंग फेज पे, यानी कुछ फोन्स में दिख रहा है कुछ में नहीं दिख रहा है, एंड्रॉयड में और iOS दोनों में ही जो है ये वर्क करेगा। सो अभी टेस्टिंग फेज में देखते हैं कि ये हमारे जनरली हमारे जो है फोन्स में आता है या नहीं आता। फिलहाल आपके जो है रेडियो सेट पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जरूर आएगा, सो इस गाने को एंजॉय करो। मैं जो है थोड़ी सी देर में वापस लौट के आऊंगी एक अमेजिंग वाली न्यूज के साथ और किसी को हैप्पी बर्थडे भी विश करेंगे। सो कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आर आपके रेडियो सेट पे, कूच ना खरी गाने का नाम है।
1: cool song. रेडियो ऑलिफ पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
0: नबील शौकत अली की आवाज में कुछ ना करी एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

देखिए सावन तो बैर ही हो ही रखा है क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, तो सावन का तो नाम और निशान नहीं है, इसीलिए सावन से ना थोड़ी सी हमने बैर पाल लिया है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसूसन, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। लेकिन देखिए अब आज जो है मैंने आपको ये बोला था कि यार किसी का बहुत कि कोई बहुत स्पेशल है जिसका आज हैप्पी वाला बर्थडे है, सो सौरभ गांगुली जी का आज हैप्पी वाला बर्थडे है। अब इनके बारे में बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्स जो है वो मैंने पता लगाए हैं। तो इन्हें कहा जाता है द गॉड ऑफ द ऑफ साइड। हाँ जी, ध्यान से सुनिए, द गॉड ऑफ द ऑफ साइड। अब क्या है, सौरभ गांगुली जी जो है वो ऐसा लाइफ में राइट हैंडेड है, लेकिन उन्होंने बचपन में अपने लेफ्ट हैंडेड बैटिंग जो है करने वाले भाई की किट यूज करी, इसलिए तब से वो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग जो है वो करने लग गए, इसीलिए उन्हें कहा जाता है द गॉड ऑफ द ऑफ साइड। अब देखिए पहले जो है सौरभ गांगुली जी को फुटबॉल काफी पसंद था, सो पहले वो फुटबॉल खेलते थे, लेकिन अपने भाई से इंस्पायर होने के बाद उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री गाइस। देखिए ये जो है काफी एक अच्छी नीच फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपनी चाइल्ड हुड जो है बेस्ट फ्रेंड से शादी करी है, सो लव मैरिज किया है एंड अपने बचपन के प्यार को पूरा किया है। सो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड है जो इनके नाम है, लेकिन प्यार को पूरा करने वाला रिकॉर्ड जो है वो भी इनके नाम है। अब इनके अगर कुछ रिकॉर्ड की हम बात करें तो वो दुनिया के अकेले प्लेयर हैं जिन्होंने ODI में लगातार 4 बार प्लेयर ऑफ द मैच जो है अवार्ड जीता है 1997 में पाकिस्तान के खिलाफ। अब देखिए डेब्यू पर सेंचुरी जो है लास्ट मैच में 0, उन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच यानी 1996 में सेंचुरी लगाई थी, लेकिन अपने करियर की आखिरी टेस्ट इनिंग 2008 में वो पहली बार जो है पहली ही बॉल पे 0 पे आउट हो गए थे। देखिए यार ये तो होता रहता है, कोई बात नहीं। अब इसके साथ साथ ये जो है बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में भी अभी काम कर रहे हैं, टीवी शो होस्ट रह चुके हैं ये, किसी जो है एक हमें काफ़ी सारे एड्स में देखने को मिलते हैं एंड अब फुल फ्लेजेड जो है इनका बहुत बढ़िया जो है एक ऑरा क्रिएट हो चुका है। सो सौरभ गांगुली जी को हैप्पी बर्थडे बोलते हुए एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना जो है वो मैं आपको सुना रही हूँ, सो ये गाना एंजॉय करो, आकर जो है थोड़ी और बातचीत करेंगे। स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सोनिए।
1: पिलपिता गाने का नाम है, मैं इतनी देर से उसे पपीता पपीता पढ़ रही थी, लेकिन दिलजीत दोसांझ का ही गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो हॉल पर। मैं हूँ आपकी कसूस शो, आप मेरे साथ लाइफ मस्त है एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय कहने का। सो देखिए मैं यहाँ से चलती हूँ, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जाते जाते वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि गाड़ी जो है वो धीरे धीरे हौली हौली चलाइए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, स्किप नहीं करना है। रेडियो ऑलिव डॉट क्यू ए यानी रेडियो ऑलिव कतर का जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसे आप जाकर फॉलो कर सकते हैं हमसे फर्दर बातचीत जारी रखने के लिए। बाकी व्हाट्सएप वाला नंबर तो आपके पास है ही 3311063। फिलहाल मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn? अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस और सुनो देयर इज मोर विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिवीजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
1: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है यहां हर चोट एक मेडल है हारना मना है और डरना गुनाह है यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं दिलों की धड़कन शोर करती है और ऑडियंस चीयर नहीं रोर करती है बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम इट्स एन इमोशन
2: इट्स नॉट जस्ट अ गेम इट्स एन इमोशन इट्स एन इमोशन इट्स एन इमोशन
1: फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
3: In association with
4: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
5: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
4: Your trusted remittance partner.
6: Hi Radio Olive 106.3 listener. This is Shah Rukh Khan.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Akshay Kumar.
9: Hi, this is Anushka Sharma.
10: And I'm Arshan Vasi.
11: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: Manila's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Gio Bindas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर. हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Mornings and night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
0: ऑलिव म्यूजिक मैराथन एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने

0: दीपिका पादुकोण रेडियो ओलिव 106.3
1: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

0: रोमी की आवाज में मिर्जापुर से ब्यूटीफुल ट्रैक, गुड्डू भैया की शादी होती है इस गाने पे और बहुत ही सुंदर लिरिक्स है यार। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, तनिषा आगी जी आपके साथ ऑलिव रिचार्ज लेकर अ वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान। जुलाई 8 वेंसडे का दिन कैसा जा रहा है? वीकेंड बहुत नजदीक है तो मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो आपकी क्या हाल चाल है ये जानना चाहूंगी। 3311106 पर मैसेज कर दीजिए।
1: दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों?
0: सुनता ही नहीं है यार दिल, पर ये गाना बड़ा सुंदर है यार।
1: तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं?
0: जो मर्जी करो हमें क्या।
1: होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या जी।
0: भाई क्या क्रेजी माहौल सेट होने वाला है, इतने अमेजिंग गाने लाइंड अप है। ऑब्वियसली क्यों मानू मैं, मुझे मैसेजेस चाहिए आपके। जी हाँ, 3311106 पर आ जाइए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर। हाल चाल बताएं, हाउ हैज द डे बिन सो फार, व्हाट्स द मूड फॉर दिस वेंसडे, सब जानना चाहती हूँ। फिलहाल सुनते हैं आदित्य रिखारी अरमान की आवाज में मैं वापस आऊंगा से वो नहीं ब्यूटिफुल ट्रैक। स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Hi Radio Olive 106.3 listeners. This is Shahrukh Khan.
3: Shahrukh Khan. I'm number one.
4: Radio Olive. Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

0: Ash King aur Shilpa Rao ki awaaz mein mehrwan ho raha beautiful track only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath Olive Retard chal rahe hain yahan par aur maine haal chal pooche the Mohammed Yusuf Khan saab ka message aaya hai mujhe ki sab kuch badhiya hai ekdam fine hai wo main bhi bilkul theek hu ji mera bhi ab tak ka din ekdam badhiya gaya hai and he is saying subah Sudev ke saath the acha lagta hai aap dono ko ek saath sunke aa rahe thank you so much aur saath mein yahan pe mujhe ek aur message aaya hai and it is from Sheikh और वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है कोई बढ़िया सा गाना चला दो अभी आ रहा है बस कूल सॉन्ग आ रहा है अगला आप ही के लिए ऑल्सो द सॉन्ग इज फॉर आयशा हैदर जो कि बहुत सैड है क्यों सैड हो आयशा क्या बात हो गई है आई नो गर्मी में मूड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है और जैसा वेदर अभी हो रहा है गलती से आप बाहर निकल जाओ कितना भी अच्छा मूड क्यों ना हो खराब हो जाता है मेरे साथ तो डेफिनेटली यही हो रहा है तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड अभी बढ़िया एकदम कूल सॉन्ग भेज रही हूँ आपकी अली जफर और सारा हैदर की आवाज में ए दिल किसी की याद में व्हाट अ ब्यूटीफुल रेंडिशन इट इज यार आई लव दिस वन तो आइए साथ में एंजॉय करते हैं और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव जियो बिंदास मेरी जान
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
2: बात है सर क्या बात ये बात है कूल सॉन्ग

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by.
5: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.

0: तनिषा
1: अब उदित नारायण साहब इतने प्यार से बोलेंगे तो मैं कैसे ना मानूं कि मैं ब्यूटीफुल हूं, है? बताओ. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM. तनिषा आपके साथ ऑलिवी चार्ट चल रहे हैं यहाँ पर. और भाई बहुत सारी चीजें हो रही हैं कतर में इस वीक. तो वीकेंड आ ही गया है ऑलमोस्ट, यू नो, बस कल का दिन है. ये स्ट्रेस होगा कि यार क्या करना है क्या करना है. डोंट वेरी, आई एम हियर. मेरी जान, किस चीज का स्ट्रेस लेते हो यार. सो देखो, मैंगो का सीजन चल रहा है. सुबह शाम दिन रात भी मैंगो खाओ तो भी मन नहीं भरता. मेरे साथ तो यही हो रहा है. एंड नाउ पाकिस्तानी मैंगो एग्जीबिशन जो है वो भी शुरू होने वाली है कल से सूक वाकिफ में. 9-18 July तक ये चलने वाली है. शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप वहाँ जा सकते हैं. देन अली बिन हमद अल अतिया अरेना में फ्री आइस हॉकी, स्केटिंग एंड कर्लिंग भी स्टार्ट होने वाला है 11-14 July तक. शाम 6 बजे से शुरू हो गई है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं. कतर टॉय फेस्टिवल तो ऑलरेडी चल ही रहा है जो कि 31 July तक चलने वाला है. तो वहाँ लेकर जा सकते हैं बच्चों को, फैमिली के साथ जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे सबके लिए. तो इतनी सारी चीज़ें हो रही है यार कतर में. हमें कभी भी इस चीज़ का स्ट्रेस तो होता ही नहीं है कि यार वीकेंड आ गया मैं क्या करूँ, क्योंकि देर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस. इट्स जस्ट हम फोकस करते हैं बिंज वॉचिंग पे. आई नो. और उससे मुझे याद आया, प्रीतम और पेड्रो नहीं देखा है तो देख डालो बेटे. ब्यूटिफुल ट्रैक इन द वॉइस ऑफ रूप कुमार राठौर साहब फ्रॉम द मूवी रब ने बना.

0: सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर। कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: हमने लगा और हो जा रिचार्ज।
3: ऑलिव रिचार्ज।
4: ऑलिव रिचार्ज। रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर। जियो बिंदास।
3: ऑलिव रिचार्ज।
5: This hour is brought to you by.
6: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।

डियर जिंदगी से अरिजीत सिंह की आवाज में खूबसूरत गाना ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम. तनिषा आपके साथ ओलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. एंड विदाइया जी, विदाइया कतर हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 एशियन क्वालिफायर्स. जी हाँ. एंड एनी वे कतर वॉज ऑलरेडी क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ द बींग द होस्ट नेशन, बट स्टिल यू नो द टीम इज कम्पीटिंग इन द क्वालिफायर्स सो दैट वो टूर्नामेंट के लिए और बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सके. आप डेडिकेशन और एफर्ट्स देख रहे हो, कमाल है यार. एंड कतर में हो रहा है तो देखो अमेजिंग तो होगा ही. ये होने वाला है 27 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027. एंड आपको पता है कतर और स्पोर्ट्स जितने भी यू नो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है वो उनका लेवल अलग होता है. बेंचमार्क जो एक सेट कर लिया ना वो अब कोई ब्रेक नहीं कर सकता. जी हाँ, आदत लग चुकी है वो उस यू नो जितना वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, जितनी सारी चीज़ें अमेजिंगली प्रिपेयर्ड होती हैं और वॉलंटियर्स आर देयर एंड सब कुछ बहुत सही तरीके से हो रहा होता है. सो लोगों ने ना अब इससे कम एक्सपेक्ट करना या एक्सेप्ट करना बंद ही कर दिया है एंड वो हम फिलहाल देख ही पा रहे हैं. बट या सो ऑगस्ट में ये होने वाला है, आप आई नो इंतज़ार कर रहे होंगे. बट फिलहाल हम खुशियाँ मनाते हैं कि हमारी टीम ने क्वालिफाई कर लिया है. इसी बात पर सुनते हैं फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर. स्टे ट्यून ऑन रेडियो बंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khol.
2: Hi, main hu Sarika.
3: Sarika.
2: Radio. Aap mujhe sun rahe hain Radio Olive 106.3.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: Radio Olive, I'm the number one.
5: Olive laga aur ho ja recharge.
4: Olive recharge.
6: Olive recharge. Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
4: Olive Recharge.
7: This hour is brought to you by.
8: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड केक गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

शान और अलका याग्निक की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम मूवी कल हो ना हो, कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है। और अगर ये फीलिंग अच्छी लग रही है ना तो बस इंजॉय करो, ज्यादा सोचने का नहीं है, ठीक है। तनीषा के साथ आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर ऑलिव रिचार्ज चल रहे हैं यहाँ पर, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट रेखा भारद्वाज एंड विशाल भारद्वाज। सो दे हैव सच अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। सो विशाल भारद्वाज मूवीज और म्यूजिक में पता है क्यों आए हैं? बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर रेखा जी। सो रेखा जी ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ सिंगर, ठीक है, एंड शी वॉज वर्किंग इन बॉलीवुड बट इतना काम चल नहीं पा रहा था, एंड देन विशाल भारद्वाज केम इन टू द पिक्चर एंड ही लाइक यू नो बिकेम बिग ऐसे ओवरनाइट। एकदम से उनकी मूवीज बहुत हिट हो गई, उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा, पर रेखा जी को वो सक्सेस का जो टेस्ट था, जो वो चाहती थी, जो फेम वो चाहती थी, वो उन्हें नहीं मिला। एंड उस वजह से वो बहुत डिप्रेस हो गई कि यार प्यार तो मिल गया पर वो जो मैं अपने काम के थ्रू सक्सेस चाहती थी वो नहीं मिल पाई, एंड शी गॉट वेरी डिप्रेस यू नो। एंड इवेंचुअली फॉर अ ईयर वो दोनों अलग भी रहे बिकॉज ऑफ रेखा जीज मेंटल हेल्थ। लेकिन विशाल जी ने इंतजार किया, फिर एक साल के बाद वेर एवर रेखा जी वॉज वो भी वहां चले गए उनके साथ, एंड देन केम ओमकारा। और ओमकारा में गाना आया नमक इश्क का, जी हाँ। उस गाने के बाद रेखा जी जो ही यू नो बुलंदियों की सीढ़ी पर चढ़ी हैं, फिर पीछे मुड़ के देखने का कोई नाम नहीं था। एंड दैट शोज द ब्यूटिफुल लव स्टोरी, यू नो द वे विशाल जी वेटेड कि ओके फाइन आई अंडरस्टैंड व्हाट ऑल शी इज गोइंग थ्रू एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बी देयर बाय हर साइड। कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, बस वो वहां थे उनके साथ, उन्होंने उनके साथ इंतजार किया उनकी सक्सेस का, एंड दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव एंड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल यार। इसी बात पे सुनते हैं रेखा जी की आवाज में मिलिया मिलिया फ्रॉम द मूवी हैप्पी एंडिंग, जो कि बेसिकली उन दोनों को भी मिली। स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।

0: from Joya Lucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by.
5: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.

You are listening to Radio 106.3 FM, the Nisha aapke saath, aur abhi chat chal rahe hain yahan par. Wacky wisdom mein aaj hum ek bahut khoobsurat si story ke bare mein baat karne wale hain. So there was this graphic designer called Paula Scher. And there's this bank called Citibank. अगर उसका logo देखा होगा तो उसके ऊपर एक छोटा सा red color का umbrella है and then Citibank लिखा हुआ है. That's the logo. और वो logo Paula Scher ने design किया है in few seconds on a napkin. So Citibank wanted to, you know, change their logo और उन्होंने meeting बुलवाई and Paula Scher was the designer for it. वो लोग discuss कर रहे थे बैठ के meeting में कि you know कैसा logo चाहिए, क्या क्या चाहिए उसमें and all that. और वो सुनते सुनते ही you know within few seconds उन्होंने एक paper napkin लिया Paula ने और she started scribbling और scribble करते हुए she came up with this logo and she just slides it कि ये लो, ये रहा आपका logo. And they were shocked. उस फ्यू सेकेंड्स में जो उन्होंने लोगो बना के दिया है उसके लिए उनको $1.5 million पे किए गए थे. लेकिन पीपल वर शॉक कि यू नो आप कैसे ऐसे कुछ सेकेंड्स में हमें हमारा लोगो बना के दे सकते हो. तो शी वाज लाइक ये लोगो जो बना है ये कुछ सेकेंड्स एंड 34 इयर्स में बना है. सो मैंने आपको दिया कुछ सेकेंड्स में है लेकिन मैं अपने साथ जो अपना 34 इयर्स का एक्सपीरियंस लेकर आ रही हूँ उसी की वजह से आपको ये कुछ सेकेंड्स में मिला है. सो यू कैन नॉट से कि मैंने बस ऐसे ही बैठे बैठे इन फ्यू सेकेंड्स बना के दे दिया है. इट टुक मी 34 इयर्स एंड एडिशनली दोस फ्यू सेकेंड्स एंड दैट्स हाउ इट इज राइट. हम कहीं पर भी जाते हैं कुछ भी काम करने अपने साथ अपने पीछे इतना सारा एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं तभी हम वो काम इतनी काबिलियत के साथ कर पाते हैं. एंड दैट इज सच अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ इट एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट स्टोरी. अगर आप अभी गूगल पर जाकर चेक करेंगे ना तो आपको वो पेपर नैपकिन का पिक्चर भी दिखेगा अगर आप जो एक इनिशियल लोगो सर्च करेंगे सिटी बैंक का तो. एंड दैट्स रियली अमेजिंग या वंडरफुल. सेंडिंग अ ब्यूटिफुल ट्रैक योर वे. स्टे ट्यून्ड. एंड्रियो बिंदास. I'm gonna be a fan of you.

0: हमारे घरों का आराम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका एक छोटा सा कदम बड़ा और स्थायी बदलाव ला सकता है।
1: अपने एयर कंडीशनर का तापमान 23 से 24 डिग्री पर सेट करें और खिड़कियां बंद रखें। इससे हम सभी मिलकर बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं।
0: ऊर्जा संरक्षण का मतलब त्याग नहीं है, बल्कि यह जागरूकता है। #KeepItSustained, क्योंकि सुविधाएं, कृतज्ञता और संसाधनों के प्रति जागरूकता ही उन्हें लंबे समय तक बनाए रख सकती है।
1: कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉर्पोरेशन, करामा।

0: साथ ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीषा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

मीका सिंह की आवाज में तमाशा मूवी से हीर तो बड़ी सैड है। सैड हीर को खुश करने का एक बहुत ही बढ़िया पैंथरा मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ और रिचार्ज चल रहे हैं यहाँ पर। अगर आपकी हीर सैड है तो उसको खुश करने के लिए पहुंच जाइए मलबार गोल्डन डायमंड्स। जी हाँ, क्योंकि जो गोल्डन समर ऑफर है उसमें आप अगर डायमंड या फिर प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदते हैं वहां से तो आपको फ्री कैश वाउचर मिलेगा, तो हीर भी खुश हो जाएगी और आप भी खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? हाँ जी। अलॉन्ग विद दैट, इफ यू हैव एनी ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी एंड यू वांटेड टू यू नो एक्सचेंज इट, पर डर था कि यार लॉस हो जाएगा, यू नो रेट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो वो स्ट्रेस मलबार गोल्डन डायमंड्स ने आपके लिए पूरी तरह से दूर कर दिया, क्योंकि वहां जाकर आप कहीं से भी खरीदी हुई अपनी ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज करवा सकते हैं बिना किसी लॉस के। तो इतना बढ़िया मौका है, मौके पे चौका मार लो मेरी जान और सुनते रहो रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन एमोशन।

0: सेवा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Main hoon Ali Kapoor. Radio Olive, you're with us.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network. Radio.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

तनिषा बाग मिलका बाग मूवी से जावेद बशीर साहब की आवाज में बेहद खूबसूरत गाना ऑल ऑन रेडियो एलिव 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहे हैं पर लेम जैम्स का वक्त हो गया और आज का मेरा जो लेम सवाल है वो है कि आपने मुझे बताना है एक ऐसा रूम जिसमें ना तो कोई दरवाजा होता है ना कोई खिड़की होती है, अ रूम विच हैज नो डोर और विंडो, ऐसा कौन सा रूम होता है ये बताइए मुझे। 3311 1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर। एक ऐसा रूम जिसमें ना कोई दरवाजा है और ना कोई खिड़की। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas. Olive Recharge.
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: देर लगा और हो जा रिचार्ज।
0: रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: This hour is brought to you by.
3: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।

0: Denisha. Denisha.
1: Denisha. Lambert and Brigham Azume from the movie Tanuvet Zumanu Sadi Gali only on Radio 106.3 FM. Denisha aapke saath. All every chart chal rahe hain abar aur Sudev ji studio mein aa gaye hain.
2: Yes.
1: Ji.
2: Dasiye tusi.
1: All good. मैं यहाँ लेम जैम्स के सवाल का जवाब देना चाह रही थी, तो आप कोशिश करना चाहेंगे?
2: पूछिए सवाल.
1: सवाल था कि ऐसा कौन सा कमरा है,
2: कौन सा कमरा है
1: जिसमें ना कोई दरवाजा है ना कोई खिड़की है?
2: मशरूम.
1: हाँ, करेक्ट आंसर, एकदम सही जवाब, और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है.
2: थैंक यू सो मच.
1: सेकंड चांस में इनिशियली मुझे सिर्फ दो लोगों के करेक्ट आंसर आए थे, लेकिन एक जवाब विच स्टूड आउट विच इज नॉट द करेक्ट आंसर दो इज दिल का कमरा. एकदम डीप ही हो गया भाई साहब. ठीक है, बह गया इधर तो ठीक है. बट यार थैंक यू सो मच मेरी जान फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माय लेमनेस.
2: प्लेजर प्लेजर प्लेजर.
1: अभी
2: पांच सौ रियाल निकालो.
1: अभी वक्त हो गया मेरे जाने का. कल वीकेंड वाली मूड में होंगे हम तो. बहुत
2: मैं तो आज से ही हूँ.
1: आई नो
2: एक्चुअली मैं कल से ही हूँ.
1: हाँ, तू आई थिंक सैटरडे से ही रहता है. तू कंटिन्यू ही रहता है आपका, खत्म नहीं हो पाता.
2: मुझे लगता है जब से मैं आया तब से
1: हूँ. सिमरन आती होगी कुछ देर में. आप अपना ख्याल रखिएगा. एंड इफ यू हैवंट फॉलोड अस ऑन सोशल मीडिया गेट कर लो यार. क्या कर रहे हो यार?
2: नहीं तो क्या.
1: हाँ जी, radioolive.qs इज द हैंडल और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जी हाँ, बिंदास मेरी जान.

ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। जी और बताइए क्या हाल चाल है, कैसा रहा आपका आज का दिन? मेरा आजकल ना छीके मारते मारते दिन जो है वो निकल रहा है, बट यस ऑफकोर्स ये मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर दूसरे तीसरे इंसान को जिसको धूल से एलर्जी है, जिनको समर कोल्ड होता है, उनके जो है वो बुरे हाल हो चुके हैं। वैसे इस घंटे हम आज एक एलर्जी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी तो आई हूँ। कुछ लोगों से भी एलर्जी होती है, कुछ लोगों को उन लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास रहिए क्योंकि चार घंटे अपने ही हैं और हम सेहत के लिए हानिकारक नहीं है यार। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए 3311063 पर, आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।

0: Olive. 106.3 FM. 106.3 Radio Olive. Gio Binda. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: हाय रेडियो ऑलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज रणवीर सिंह. स्टे ट्यून्ड.
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
4: रेडियो ऑलिव हमें नंबर वन.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ.
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद. बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
8: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
2: अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिवीजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: all the time.
1: So, एक चीज ना बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है, हम सबको कोई ना कोई एलर्जी जो है वो रहती है, किसी चीज से होती है. किसी कॉस्मेटिक से होती है, किसी खाने से होती है. सो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी बॉडी जो है वो चेंज होती रहती है. जिस चीज से पहले आपको एलर्जी नहीं थी वो होने लग जाती है. फॉर एग्जांपल मिल्क जो है वो कुछ लोगों को बचपन से हम सब पीते आ रहे हैं, लेकिन एक एज के बाद जो है वो आपको लैक्टोस इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो जाती है. और मेरे को एक एलर्जी चल रही थी जिसके पीछे क्या होता था कि मेरी आंखें स्वेलिंग हो जाती थी. आंखें पता नहीं लग रहा कि स्वेलिंग क्यों हो रही है. अरे दूसरे तीसरे दिन मैं डॉक्टर के पास भाग रही हूँ. बाद में मुझे क्या हुआ कि पता लगा कि ये कॉस्मेटिक था किसी तरीके का जो मुझे सूट नहीं कर रहा था, उसकी वजह से हो रही थी. सो आप भी अपनी बॉडी की सुनिए, अगर आपको लग रहा है आपको रैशेज हो रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, बॉडी रिएक्ट कर रही है, तो एक एलर्जी टेस्ट जो है वो जरूर करवा लीजिएगा, बेस्ट रहेगा आपके.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन।

0: in association with.
1: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
2: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
1: Your trusted remittance partner.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai, malai maar ke. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
2: 106.3 FM रेडियो ऑलिव
1: जियो बिंदास.
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ 106.3 जब आप इस तरह से गाते हो ना, जो रेडियो ऑलिव की स्टेशनैलिटी होती है, जिंदगी प्यारी होती है यारों के साथ, बड़ा अच्छा लगता है यार कि रेडियो ऑलिव की फैमिली के साथ जो है वो आप इस तरीके से जुड़ गए हो कि जितना जब रेडियो ऑलिव की ये स्टेशनैलिटी, ये सॉन्ग जब बजता है हम फील करते, उतनी फीलिंग जो है वो आपको भी आती है। लेकिन ये फीलिंग जो है वो हर तरफ बराबर होनी चाहिए। रेडियो पे आप हमें इतना सारा प्यार देते हो, हमारे सोशल मीडिया को भी आप उतना ही प्यार दीजिए। हमारे सोशल मीडिया पे जो है वो आप बने रहिए, और क्योंकि बहुत सारे कॉन्टेस्ट हमारे सोशल मीडिया के थ्रू जो हम कर रहे हैं, जो हमारे वो बहुत सारे विनर हमारे बनते हैं। कभी कभी उनका लक जो है वो रेडियो पे नहीं लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सिंपल से स्टेप्स फॉलो करके आप लोग जो है वो बहुत कुछ जीत सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप जो है वो हमको सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें। एंड एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके फोन में कोई और एप्लीकेशन हो ना हो, रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: the 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: Trek. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलीनियर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
4: हेलो लिसनर, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: रेडियो ऑलिव नंबर वन।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ।
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
10: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: सर्टिफिकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardust evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

मुझे वैसे लगता नहीं कि मुझे आपको वेदर के हाल बताने की जरूरत है। क्योंकि पूरा कतर खुद ही गैस कर रहा है कितने टेम्परेचर है। कोई कहता है भाई टेम्परेचर तो 50 तक पहुंचा, कोई कहता है नहीं 47 होगा। सो यार यही हाल है। सो दिन में आज जो टेम्परेचर था वो 44 डिग्री सेल्सियस था और आज का मिनिमम टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। सो यार ह्यूमिडिटी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जाएगी, विंडी जो है वो काफी ज्यादा हो रखा है। अब जब विंड चलती है तो डस्टी वेदर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जिनको मेरी तरह जो है सेंसिटिव स्किन है, जिनको धूल से भी एलर्जी है, तो मास्क अगर आप और हम लोग पहनेंगे, मैं अपने आप को भी सुना रही हूँ क्योंकि ये कांड मैं करती नहीं हूँ, ठीक है, बट करना जरूरी है। सो या मास्क वगैरह पहनिएगा और ध्यान रखिएगा। सिमरन गौरिया आपके साथ, जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: हाँ जी, तो फिर
1: अच्छा जी,
2: Gen Z decoded.
1: ऐसा ही क्या?
2: दा दा दा।
0: ऐसा ही है। खूबसूरत होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कई कई बार हम लोग नहीं बोल देते कि भाई क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये फेस कार्ड खेलती है ना, ये फेस कार्ड खेलता है। सो या आज का वर्ड है फेस कार्ड। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो
1: बिंदास। अभी

भाई साहब ये क्या हो रहा है। सिमरन कौर आपके साथ। देखो यार सॉकर खेलना इंसानों का काम है, लेकिन आपको ये ऐसा लगता था, लेकिन ये सॉकर जो है वो अब रोबो भी खेल सकते हैं। रिसेंटली बीजिंग में एक रोबो लीग जो थी वो होस्ट की गई, जिसमें कोई इंसान नहीं है, जिसमें जो वो रोबो लीग है वो ह्यूमनॉइड रोबोट जो है ना वो खेल रहे हैं। भाई साहब मैंने इसका वीडियो भी देखा, पहले मुझे पढ़ के यकीन नहीं हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये रोबो लीग चल रही है जिसमें रोबो ही खेल रहे हैं और इंसान नहीं है। Yes, of course. देखा दुनिया जो है वो बदल रही है। मुझे लग रहा है कि अब एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि अगर किसी को कुछ किसी को गिफ्ट करना है तो उसको रोबो ही गिफ्ट करेगा भाई, उसके घर के सारे काम कर देगा। वो तो सॉकर भी खेल रहा है भाई, सोचो अब तो वो ऐसे रोबो भी आ गए जो आपका घर का काम जो है वो प्रॉपर करते हैं। सो यार देश बदल रहा है दोस्त। सिमरन गौरी आपके साथ।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jio
1: Bindas. Time check. Brought to you by Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Wakif Alkhol.
2: A ring for the newly married. Cute little bangle for the newborn.
3: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ आइए free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम मैं हूं जैकी श्रॉफ
5: रेडियो 106.3 जियो बिंदास
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क रेडियो ओलिव
6: नंबर वन. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
7: साथ. जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
8: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहो और ऐसे लोगों से थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा दूर रहो।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: हां जी मैं जी सुनियो कि दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल। अपना बैकग्राउंड म्यूजिक किधर है? आपके साथ। और क्या होता है कि जब आप अपनी जिंदगी में खुश होते हो और आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हो, है ना, तो एक सामने से इंसान जो है वो आपकी उस खुशी में खुश ना होके, उस खुशी की बधाइयां आपको ना देके कोई ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा है जो चीज आपको हिट करेगी, मतलब वो आपकी अचीवमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं है, जो कि शायद आपको वो बात अनकंफर्टेबल कर दे। सो ऐसे लोग जब भी आप स्पॉट करते हो उसी टाइम वो जो कह रहे हैं ना उनको मान लो। कभी कभी हमको लगता है नहीं नहीं नहीं, इसका कहने का वो मतलब नहीं होगा, इसका नहीं, जो वो कहता है उसका कहने का मतलब वो ही होता है। सो मेक श्योर थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि आपका मेंटल पीस दोस्त बहुत ज्यादा जरूरी है। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ। Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

तो दोस्तों अब मैं लेने वाली हूँ आप सबके नाम, तैयार हो जाइए। लेकिन आपके नाम से पहले मेरा नाम आएगा यार। सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नाम लिख के भेजना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम लिया जाए तो नो हाई नो हेलो नो इमेजिनरी नेम्स। और एक बार अगर आपका नाम ले दिया गया दोबारा मत लिखना, बेचारे दूसरों के नाम रह जाते हैं यार। चलो अब मैं नाम लेना स्टार्ट कर रही हूँ। यूसुफ अरहम, KKR, ओके KKR, ओके स्वप्निल जी, इम्तियाज जी, मंदीप जी, जासिर जी, उसामा जी, थैंक यू सो मच, मुबीन जी, थैंक यू सो मच, बालूशाही, अब ये बालूशाही क्या होता है यार? बालूशाही खाने वाली चीज़ होती है, नाम थोड़ी होता है यार। संधू जी, थैंक यू सो मच, जुल्फी जी, थैंक यू सो मच, सैमी जी, थैंक यू सो मच, अमर जी, थैंक यू सो मच, शशिकांत जी, थैंक यू सो मच, फिलिप जी, थैंक यू सो मच, फैजल जी, थैंक यू सो मच, वकील जी, थैंक यू सो मच, मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच, निरूपा जी, थैंक यू सो मच, सूरज जी, थैंक यू सो मच, सनाया जी, थैंक यू सो मच, हुजैफा जी, थैंक यू सो मच, क्रिस जी, थैंक यू सो मच, चेरी जी, थैंक यू सो मच, अखिला जी, थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया, अमर जी थैंक यू सो मच, हुसैन जी थैंक यू सो मच, जिन जिन लोगों के नाम ले लिया, अब आप थैंक यू लिखिए और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी बनाना मत भूलिएगा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन।

0: सेवा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
0: योर ट्रस्टेड रिमिटेंस पार्टनर

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Time check.
2: Brought to you by
1: Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
0: Dr. On Air brought to you by Naseem Healthcare.
5: Hi, I'm Dr. Sara Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
0: Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
6: हेलो नमस्कार, मम्मी मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

यार जब भी कोई आइसक्रीम का नाम लेता है ना, मुझे मेरा बचपन याद आ जाता, बड़ा मजा आता था यार। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है, जिस तरह की फ्लेवर वाली आइसक्रीम आपको अच्छी लगती है। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो ऑरेंज वाली आइसक्रीम रहती थी ना, बर्फ वाली, वो बहुत ज्यादा पसंद थी। और बट वो जो गली में गाड़ी आती थी आइसक्रीम वाली, और फिर बड़ा मजा आता था वहां से आइसक्रीम खरीदने का। बट ये फील आपको अब कतर में भी आएगी, क्योंकि हाला समर आइसक्रीम वैन जो अपने कतर में घूम रही है, जो कि 30th जो है वो सितंबर तक घूमने वाली डिफरेंट लोकेशंस पर। सो अगर आप इसको स्पॉट करते हैं तो आइसक्रीम लेना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी फ्लेवर्स हैं इस वैन के पास, ओरियो टू बबल गम। जी हाँ, मतलब ₹5 में आपको एक स्कूप जो है वो मिल जाएगा। सो यस, अगेन मैंने आपको वही बोला कि 30th सितंबर तक होएगा, सो आपको जरूर ये वैन दिख जाएगी। तो अगर दिखी और आपने इसकी आइसक्रीम ट्राई की, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, मुझे जरूर बताइएगा। सिमरन कौरियाओ के साथ जियो बिंदास, और अगर आपने ऑलरेडी खा ली है तो अब बता दो।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Fresh on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

अब सिमरन कौर के ऐसे गल्डी माने का टाइम आ चुका है। खाने में रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो गिलो।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

Good evening, Qatar. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai, yes, Midnight Lounge. So, aaj birthday hai Neetu Kapoor ka. Bollywood ki ek aisi actress ka birthday, junke chehre par smile bhi acting ka hissa lagti hai. Aaj ki generation unhe Ranbir Kapoor ki mom ke roop mein janti hai. Lekin 70s aur 80s mein wo Bollywood ki sweetheart thi. Aur ek interesting trivia batati hu. Neetu Kapoor ne sirf 8 saal ki age mein as a child artist camera face kiya tha. Aur phir Rishi Kapoor ke saath unki jodi Kabhi Kabhi aur phir Amar Akbar Anthony Khel Khel mein ye sab super hit movies hai unki. Ek ke baad ek super hit. Lekin mujhe unki journey ka sabse beautiful part kya lagta hai? Shaadi ke baad unhone family ko choose kiya. और सालों बाद फिर से कमबैक किया हर बार नए रोल के साथ शायद इसीलिए कहते हैं कि रियल स्टार सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चमकते जिंदगी में भी चमकते हैं हर रोल को उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया है चाहे वो ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन हो सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपके हिसाब से बॉलीवुड की सबसे ग्रेसफुल एक्ट्रेस कौन सी है 3311063 इज माय नंबर वी विल टॉक अबाउट नेटफ्लिक्स यार मैं अभी दो दिन पहले ही उनकी एक मूवी देख रही थी विच वॉज दादी की शादी नेटफ्लिक्स पर आई है पहले थिएटर रिलीज हो चुकी थी लेकिन अभी मैंने नेटफ्लिक्स पर देखी सो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव स्टे ट्यून्ड टू यू बिंदास

0: ये है मिडनाइट लाउंज.
1: यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास.

सो आजकल एक इंटरेस्टिंग चीज ओटीटी पर देखने को मिल रही है जो है लव स्टोरी, वो भी 20 से 30 साल के लोगों की। क्यों? क्योंकि यंग एज में ही होती है भाई। लेकिन इस थॉट को बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लोर करती है नेटफ्लिक्स की दादी की शादी। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज। सो आज मैं इस मूवी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नीतू कपूर का आज 68th बर्थडे है और दो तीन दिन पहले ही मैंने नेटफ्लिक्स पर उनकी ये मूवी देखी थी। भाई इतनी अच्छी मूवी, क्योंकि आपको इसमें कपिल शर्मा एज अ लीड एक्टर दिख रहे हैं। सो बहुत सारे अच्छे स्टार्स के साथ उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग है, इट्स वेरी गुड। और उसके बाद इस फिल्म की एक और स्पेशल बात, इसमें नीतू कपूर के साथ उनकी बेटी रिद्धमा कपूर भी है, जो उन्हीं की बेटी बनी है। इसमें उन्होंने डेब्यू किया है। कितना ब्यूटीफुल सर्कल है ना, एक जनरेशन जिसने प्यार देखा और एक जनरेशन जो प्यार को नए नजरिए से देख रही है। कभी कभी हम एज को नंबर समझते हैं, लेकिन इमोशंस का कोई बर्थडे नहीं होता। प्यार, दोस्ती, कंपेनियनशिप या किसी कैलेंडर से परमिशन नहीं मांगते ये सब। सो बेसिकली आपने अगर इस मूवी को नहीं देखा है तो ये अपने नाम से बहुत अलग है। मैं मूवी का पूरा मजा खराब नहीं करूंगी उसके बारे में बता के। सो यू शुड वॉच दिस मूवी एंड जो बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी विद फन, विद कॉमेडी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

So, चलिए अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. इमेजिन कीजिए आप एक रूम में एंटर करते हो और इतनी खामोशी है कि आपको अपनी जो दिल की धड़कन है वो भी सुनाई दे रही है. थोड़ा अजीब लगा लेकिन ऐसा रूम सच में है एक जगह पर अमेरिका में जिसे दुनिया का सबसे शांत रूम माना जाता है. यहाँ बाहर की ऑलमोस्ट हर आवाज एब्जॉर्ब हो जाती है और लोग कहते हैं थोड़ी देर बाद उन्हें अपनी सांसें यानी कि धड़कन और यू नो कभी कभी जॉइंट्स के मूवमेंट तक सुनाई देने लगते हैं. सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई लोग वहाँ 30 से 40 मिनट से ज़्यादा रुक ही नहीं पाते. शायद इसीलिए हम कहते हैं कि हमें साइलेंस पसंद है लेकिन सच ये है कि हम थोड़ी सी आवाज़ की आदत हो चुके हैं. मतलब अगर आवाज़ें नहीं आए तो हमें अजीब लगने लगता है. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपको कंप्लीट साइलेंस पसंद है या थोड़ा म्यूजिक और बैकग्राउंड नॉइज़. बाय द वे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो वो बैकग्राउंड में चलता हुआ म्यूजिक और हल्की फुल्की आवाज़ें यू नो हमेशा पसंद आती है. आप मुझे अपने बारे में बताइए 3311063 पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

So, आज एक किताब की बात करते हैं। बहुत दिन हो गए किताब की बात नहीं किए बाय द वे, लेकिन ये सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, इसका नाम है द आर्ट ऑफ गैदरिंग। यू आर लिस्टिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज और इसकी ऑथर है प्रिया पारिकर। एक बहुत ही सिंपल सी बात जो कहती है कि हम किसी पार्टी को उसके फूड की वजह से याद नहीं रखते, हम उस कॉन्वर्सेशन की वजह से याद रखते हैं जो वहां पर हुई थी। सोचिए कितनी शादी अटेंड की होंगी आपने, सबका मेन्यू याद है क्या आपको, या फिर सबसे बेस्ट चीज कौन सी खाई थी आपने शादी में, ये भी याद रहता है? नहीं। लेकिन एक फनी कॉन्वर्सेशन, एक इमोशनल स्पीच या एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट सालों तक याद रहता है। शायद गैदरिंग्स की असली जान जो है वो डेकोरेशन या खाना होता ही नहीं है, लोग होते हैं और उनके बीच की बातें। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आप जब किसी फंक्शन से घर लौटते हैं तो सबसे पहले क्या याद रहता है, खाना या फिर लोग? बाय द वे खाना इज इम्पोर्टेंट, बट वो याद रहे आपको सालों तक ये जरूरी नहीं है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज. सो अच्छा, एक स्टोरी जो सुनकर पहले तो बहुत हंसी आएगी और फिर लगेगा कि यार सच में. सोचिए, एक दिन किसी ने कहा कि पिज्जा ऑर्डर करना है, लेकिन एड्रेस था स्पेस का. और बिलीव इट और नॉट, 2001 में एक पिज्जा कंपनी ने एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेशली प्रिपेयर्ड पिज्जा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा था. ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी बॉय नहीं गया, लेकिन स्पेशल पैक्ड पिज्जा जो था वो स्पेस मिशन के लिए थ्रू एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंचाया गया. कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इंसान जहां भी गया अपने फेवरेट खाने को लेकर गया, चाहे वो मिठाइयाँ हो, माउंटेन्स हो, या फिर रेगिस्तान में आप कहीं जा रहे हो, या फिर आप स्पेस में जा रहे हो. और शायद इसीलिए खाना जो है वो सिर्फ पेट नहीं भरता, घर की फीलिंग भी देता है, आपको कुछ याद भी दिलाता है, कुछ यू नो कुछ स्पेशल फील भी कराता है. तो बताइए, अगर आपको स्पेस में सिर्फ एक इंडियन डिश ले जाने के लिए चांस मिले, ठीक है, तो वो क्या होगा? कई सारे लोग तो इसका आंसर बिरयानी देने वाले हैं, आई नो दैट. सो बताइए मुझे कि आपका फेवरेट खाना क्या है जो आप हर जगह लेकर जाना पसंद करते हैं. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

कभी किसी गाने को पहली बार सुना है और लगा कि यार कितना बढ़िया गाना है, बस लेकिन कुछ साल बाद वही गाना लाइफ का फेवरेट गाना बन गया। भाई मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है हर दिन सुबह सेम गाना सुनते हुए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत से गाने रिलीज के टाइम पर एवरेज परफॉर्म करते हैं, लेकिन बाद में फिल्म, कॉन्सर्ट, रेडियो, रील्स या फिर नए लिसनर्स की वजह से कल्ट क्लासिक बन जाते हैं। मतलब हर चीज़ का जो तुरंत यू नो ताली है वो मिलती नहीं है उसे, हर चीज़ को वक्त लगता है। और शायद ये बात सिर्फ म्यूज़िक पर नहीं लाइफ पर भी अप्लाई होती है। मैंने आपको ये बात एक्चुअली म्यूज़िक के बारे में बोली नहीं है, ये लाइफ के बारे में ही है। कभी कभी सक्सेस लेट आती है, कभी कभी आप बहुत मेहनत कर रहे होते हो लेकिन आपको कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा होता। सो लेकिन जब आता है तब लंबी चलती है आपकी वो सक्सेस। सो आई विल से कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बताइए मुझे आपका आज का जो सवाल है कि ऐसा कौन सा गाना है जो पहले इग्नोर किया और आज रिपीट मोड पर सुनते रहते हो आप। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

कभी रात के 2 बजे किसी शहर को देखा है? एक अजीब सी बात होती है, मैंने तो मतलब कतर में बहुत जगहों पर देखा है कि रात को 2 बजे भी आप सेम एनर्जी के साथ लोगों को देखते हो। दिन में जो सिटी बहुत बिजी लगती है, रात में वही सिटी अपनी असली पर्सनालिटी दिखाती है। मॉल्स खुले हुए हैं, कई सारी जगहों पर आप चाय पीते हुए लोगों को देखोगे। सो अलग अलग कंट्रीज की बात करूं तो टोक्यो में मिडनाइट जो रामेन शॉप्स हैं वो खुली रहती हैं रात भर 24/7। न्यूयॉर्क में 24 आवर्स डिनर्स चलते हैं, मतलब 24 आवर्स मतलब रात पूरी डिनर्स के लिए आप उन पर जा सकते हैं। मुंबई में भी मरीन ड्राइव पर रात की हवा जो है वो लोग स्पेशली वहाँ पर इंजॉय करने जाते हैं। और दोहा का कॉर्निश वो भी बिल्कुल वैसा ही है, जहाँ रात को भी लोग वॉक करते हुए आपको मिल जाएंगे। सो इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर शहर की एक डे पर्सनालिटी होती है और एक नाइट पर्सनालिटी। दिन का शोर अलग है और रात की कहानी बिल्कुल अलग। शायद इसीलिए नाइट लवर्स कहते हैं कि रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, थोड़ा सा सुकून भी लाती है। आप मुझे बताइए, अगर दुनिया के किसी भी शहर में रात के 2 बजे वॉक करनी हो तो आप किस सिटी को चूज करोगे? आई विल चूज ऑलवेज कतर ओनली, दोहा, कॉर्निश, सूख वाकिफ। आप मुझे बताइए 3311063 पर कि आप कौन से शहर को चूज करेंगे। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

दिस इज द टाइम एंड आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. आज रात का लास्ट थॉट लेकर आई हूँ. हर इंसान की लाइफ में कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, रोमांस भी है और सस्पेंस भी है. बस बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी है. सोचिए कल नेटफ्लिक्स फोन करे और बोले कि यार हम आपकी लाइफ पर ना फिल्म बनाना चाहते हैं. हीरो भी आप हो, स्टोरी भी आपकी, पोस्टर भी आपका. सबसे पहला सवाल क्या होगा आपका? टाइटल क्या रखेंगे आप? वर्क इन प्रोसेस या फिर स्टिल लोडिंग या जिंदगी अनलिमिटेड, इस तरह का कुछ, या फिर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हम सब अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट रोज लिखते हैं यार. फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्म रिलीज के बाद आप नहीं देखते, उसको पहले ही देख लेते हो. तो आज की रात का आखिरी सवाल है कि अगर आपकी लाइफ पर मूवी बने तो उसका टाइटल क्या होगा? कल एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अपनी स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड. गुड नाइट.

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है। जबरदस्त

106.3 FM, Gio Bendaz. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. जियो बिंदास. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.